0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीकों में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर बल दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री, वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इसकी जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर की चुनौती प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज कर दिया है। एनटीए ने बताया कि यह एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। और खेलों में नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स की जोड़ी

0: आकाशवाणी FM बठिंडा ते इस वक्त तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: हुने तुसी सर्वन कर रहे सी भाई रजिंदर सिंह रागी ते उन्हां दी रागी जत्थे पासों यह शब्द गायन। आओ सर्वन करदे हां भाई मनिंदर सिंह रागी ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गाया यह शब्द गायन।

0: 101 इशारिया 1 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी सर्वन कर रहे हो प्रोग्राम अमृत वेला।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी धार्मिक गीत दिलजीत दोसांझ दी आवाज़ दे विच। आओ सुनदे हां भगती रचना साबर कोटी दी आवाज़ दे विच।

0: केबिन।
1: दोस्तों आकाशवाणी FM बठिंडा दे इस खास प्रोग्राम दे विच आप सब दा स्वागत है। अज दा सिलसिला फिल्मी अफसाने और तराने आधारित होवेगा निम्मा लोहार का ते।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। अमेरिका ने ईरानी सरकार के साथ उसके संबंधों का हवाला देते हुए हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टलवीन में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी

0: हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल दो छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टिकरण के नाम पर वंदे मातरम को दो भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। NTA ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें JEE मेन, नीट या UGC नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: NTA ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। NTA ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। NTA ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न ₹200 वापस किए जाते हैं। NTA ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
3: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर

0: ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
2: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टलफेन में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच

0: प्रसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई खेंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पथिरागे एक बार फिर आमने सामने होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पथिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
1: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है, 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है, लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक, दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोकसत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र 2 छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

0: 아니, खबरें दिनाल मैं सरबजीत कौर पहले बुलेटिन दियां खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भारत सरकार के सकत्तरां नाल तीजी उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी कीती। देश के भविख लई लंबे समय के दृष्टिकोण नाल सोचण लई कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बंदे मातरम के पूरे पाठ की बजाय सिर्फ दो छंद गाउण के फैसले की नुक्ताचीनी की। पूरा बंदे मातरम गाउण ते जोर दिता। भारत अज पुणे विच ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। जयपुर विच ब्रिक्स सैर सपाटा मंत्रियों की मीटिंग होगी। राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी का कहना है कि उत्तर चुनौती प्रणाली सारे विद्यार्थियों लिए निरपक्ष है। ते हॉकी विश्व कप विच अज भारत की औरतों की टीम एम्स्टरडम विच नीदरलैंड्स खिलाफ खेडेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी रिहायश से भारत सरकार के सकत्तरां नाल तीजी उच्च पदरी मीटिंग की प्रधानगी की। बुनियादी ढांचा से संपर्क सुरक्षा विदेश मामलों से शासन नाल संबंधित मंत्रालयों से विभागों के भविख के कारज एजेंडे से चर्चा की। मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने सकत्तरां नूं इस बारे लंबे समय के दृष्टिकोण नाल सोचण की अपील की कि देश के भविख नूं किवें टालना चाहिए। वधेरे अंतर कार्यशीलता ते डेटा दी प्रभावशाली वरतों दी मांग करदे श्री मोदी ने कहा कि डेटा एक राष्ट्रीय असासा ते भविख लई इक वसीला है। अधिकारियों विच गैर रस्मी गलबात ते टीम भावना बनाउण दी महत्ता नूं उजागर करदे होए श्री मोदी ने नीति निर्माण विच नवे दृष्टिकोण लियाउण लई सरकारी विभागां यूनिवर्सिटियां अते नौजवानां विचकार वधेरे शमूलियत दी मांग कीती। उन्हां देश की रक्षा सनत नूं होर मजबूत करन अते इस नूं विश्व पद्धर ते वधेरे मुकाबलेबाजी वाला बनाउण दी जरूरत ते वी जोर दिता। कोविड 19 महामारी अते पछमी एशिया संकट दे तजर्बियां दीआं मिसालां दिंदे होए उन्हां कहा कि अजिहियां तालमेल विधियां नूं सरकार दे कामकाज दा इक कुदरती हिस्सा बनना चाहीदा है। श्री मोदी ने मनुखी दखल अंदाजी नूं यकीनी बनाउंदे होए आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दी प्रभावशाली वरतों अते मनुखी मुहारत नाल एआई दीआं समर्थावां नूं जोड़न दे नवीनताकारी तरीकियां दी खोज करन दा सतावे दिता। मीटिंग दौरान सकत्तरां ने खेतरां दीआं तरजीहां उभर रहीआं चुनौतियां अते लागूकरण मुद्दिआं ते आपणे अनुभव सांझे कीते। कैबिनेट सकत्तर मुख मंत्रालयां ते विभागां दे सकत्तर अते प्रधानमंत्री दफ्तर दे सीनियर अधिकारी मीटिंग विच शामिल होए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नवी दिल्ली विच जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी नाल मुलाकात की थी। मुलाकात दौरान श्री मोदी ने भारत अते जापान विचकार विशेष रणनीतिक ते आलमी भाईवाली नूं होर मजबूत करन दे अपने दृष्टिकोण नूं सांझा कीता। उन्हां ने हिंद प्रशांत अते इस तों बाहर शांति स्थिरता ते खुशहाली नूं उत्साहित करन दे महत्व ते जोर दिता। प्रधानमंत्री ने जापान लई रक्षा खेतर विच भारतीय कंपनियां ते स्टार्टअप्स नाल भाईवाली दे मौके बारे गल कीती, खास करके मेक इन इंडिया पहलकदमी तहत सांझे विकास ते उत्पादन लई। रक्षा मंत्री कोइजुमी ने श्री मोदी नूं दवल्ले रक्षा सहयोग विच होई प्रगति बारे जानकारी दित्ती। एक सोशल मीडिया पोस्ट सांझी करदे होए श्री मोदी ने कहा कि उन्हां ने भारत अते जापान विचकार रक्षा ते सुरक्षा संबंधां नूं डूंघा करन ते वधिया गलबात कीती है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वंदे मातरम के पूरे पाठ की बजाय सिर्फ दो छंद गाउण के फैसले की नुक्ताचीनी की। पत्रकारों नाल गलबात करदे श्री शाह ने कहा कि यह फैसला संसद वालों पास किए कानून की घोर उलंघना से राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि 1937 कांग्रेस ने वंदे मातरम नूं दो हिस्सों में वंड दिता सी। उन्हां कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वरेगंढ से केंद्र सरकार ने इस इतिहासक गलती नूं सुधारिया अते पूरे गीत नूं कानूनी मानता दित्ती। श्री शाह ने इल्जाम लाया कि राहुल गांधी की अगुवाई हेठ कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति लई खुशामद दा सहारा ले रही है।
1: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी।
0: भारत अज पुणे विच ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 12वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस मीटिंग की प्रधानगी संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। ब्रिक्स मैंबर देशों के संचार मंत्री और सीनियर प्रतिनिधि सूचना के संचार तकनालोजी डिजिटल परिवर्तन और नवीनता को मजबूत करने पर विचार वटांदरा करेंगे। मीटिंग का विषय नवीनता सहयोग और एक लचकीले भविख लई तब्दीली है। विचार वटांदरे ब्रिक देशों के व्यापक आलमी दखण विच डिजिटल तब्दीली को हमायत देने लई विहारक सहयोग

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
3: हाँ जी वादा।
0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: आकर खिलखिलाते जाएंगे और भूमि को उठेगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे।
1: फिल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर, पीयूष मिश्रा की आवाज़ थी।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी माँ सगुना अभिनेत्री थीं। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थीं। इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

0: साठ के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जीतेंद्र के साथ।
1: मस्त बहार।

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी

जहां आ रहा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थी और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये

कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।

0: ओ ना डर के तुम और हसीन लगते हो जी।
1: ज्योति फिल्म का ये गीत भी आपको जरूर याद होगा।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज, रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

0: 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
1: ओए बुड्ढो लंबो लंबो।

0: 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकु कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।
1: हाँ।

0: तो दोस्तों ये था आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आवाज दी दुनिया दे प्यारे दोस्तों, मिति 21 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे प्रोग्राम हड बीतियां जग बीतियां नवा सिलसिला साखियां पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी।

सुनना ना भुलना। प्रसारण समा दोपहर 12:30 बजे, दिन शुक्रवार। वाचक ते निर्माता निर्देशक बलजीत शर्मा, संपादन विशेष दिशा निर्देश ते तकनीकी सहयोग गुरदीप कौर गिल।

गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, सौन दे महीने विच जद पेके गईयां कुड़ियां नूं सहेलियां मिलन आउंदियां तां हासे ठठे गल्लां बातां ते अपने पन नाल रौनकां लग जांदियां ने। अते इसे ही विषय ते अनमीत कौर ते बलजीत शर्मा जी लैके आ रहे ने प्रोग्राम पिंडां आले दे तहत विशा त्रिंजन।

गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे सत्कारयोग श्रोतियो, 22 अगस्त दिन शनिवार शाम 5 बजे प्रोग्राम किसानवाणी अंतर्गत डेयरी पशुआं दियां मुख प्रजनन समस्यावां विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी। अते ए जानकारी देनगे माहिर डॉक्टर खुशप्रीत सिंह, जो के गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे सहायक प्रोफेसर ने। इना नाल गलबात करनगे वीरपाल कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक ने बलजीत शर्मा।
0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: चूड़ी वाला ले ले बीबी चूड़ियां, चीनिया कबूतरां दे खंभा नालो गुड़ियां।

इस गीत नाल ही प्रोग्राम गीत पटारा का वेला इत्थे ही संपूर्ण हुंदा है। मैनू सुखदीप नू प्रोग्राम इत्थे ही समाप्त करन दी दिओ इजाजत, धन्नवाद। आकाशवाणी एफ एम बठिंडा एफ एम एंड 101.1 मेगाहर्ट्ज से स्टूडियो की घड़ी से समा हो रहा है 10:59 और 19 सेकेंड का। ठीक 11 बजे रिले करांगे हिंदी विच खबरां दा बुलेटिन आकाशवाणी दिल्ली तो 11:05 तो लैके 12 बजे तक रिले करांगे आकाशवाणी रेनबो दिल्ली दे प्रसारण।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच

0: वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा किया। श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना तथा संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमेरिका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर बढ़ते से दबाव का संकेत बताया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज ऊंची लहरों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, आलप्पुड़ा, एर्नाकुलम, मालप्पुरम, कोषिकोड, कन्नूर और कासरगोड के तटों पर आज सुबह 11:30 बजे तक 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में हो रही BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के तीसरे वरीयता प्राप्त लियांग वई खेंग और वांग चांग से होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, शो मी द ठुमका। ऑब्वियसली जब गाने में इतना दम हो, बीट इतनी मस्त हो, तो आपका डांस खुद ब खुद से डांस होना बड़ा लाजमी है। लेकिन अगर आप इस समय ड्राइव कर रहे हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप डांस नहीं करें। आप ट्रैफिक लाइट पर ध्यान दीजिए और रेड लाइट जब नहीं करना है, ज्यादा जल्दी में मत रहिए, बिकॉज जल्दी का काम शैतान का होता है। और ऐसा ही कुछ काम करने चाह रहे हैं मूवी के अंदर, डोंट गेट मी रॉन्ग, सलमान खान इज गोना प्ले मॉन्स्टर। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। मॉन्स्टर टाइटल से एक मूवी है जो बनाई जाएगी, और इसकी जो रिलीज है 2027 ईद में है, तो भी बड़ा समय है, उस हिसाब से रिलीज के ऊपर काम किया जाएगा। एंड द न्यूज इज दिस कि भाई सलमान खान की जो बॉडी डबल यानी स्टंट करने के लिए जिन्हें रखा गया था, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, तो इस वजह से सलमान खान ज्यादातर स्टंट्स और कर रहे हैं। बट आई एम जस्ट वंडरिंग, सलमान इस उम्र में आके अब ज्यादा स्टंट्स नहीं करना चाहिए? आई थिंक ही कैड रियली वेरी वेल। आप किसी और को भी तो हायर कर सकते हैं, हाँ या ना? आई मीन दैट्स सो सिंपल। वैसे खैर, ये तो भी बहुत फिल्म में अभी काफी टाइम है, जरूरी है। अगर आप लगते हैं सलमान की बॉडी डबल, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं भाई। इतनी तकलीफ सलमान अपने आप को क्यों देंगे? आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। हम पहुंच रहे हैं आप तक दिल्ली के दिल से 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और ढेरों फ्रीक्वेंसीज पर पूरे भारतवर्ष में।

एक आर्टिस्ट और म्यूजिक लेवल में कभी क्रिएटिव डिफरेंस हो तो बात समझ आती है, कभी पैसे को लेके कोई दिक्कत हो तो भी बात समझ आती है, लेकिन अगर कोई म्यूजिक लेबल आपको हैरास करने लगे, परेशान करने लगे, तो फिर बात समझ नहीं आती है। कुछ ऐसा ही अंदेशा जताया है, रादर कंप्लेन की है यो हनी सिंह ने, कि कोई एक म्यूजिक लेबल है, ही इज नॉट नेमिंग द लेबल राइट नाउ, बट वी कैन वेरी वेल गेस, ऐसे बहुत से म्यूजिक लेबल हैं, और वो उनके गाने, अभी वो कह रहे हैं कि मेरे और भी रिलीज हो सकते थे मेरे एल्बम्स में, ही इज बीन प्लेइंग, ही इज बीन मेकिंग लॉट ऑफ म्यूजिक, तो उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, या समहाउ कोई हो सकता है इनका कुछ अनुबंध रहा हो जहां पर उनके गानों को रिलीज नहीं किया जा रहा है। आई थिंक हनी सिंह हैज अ पॉइंट देयर। तो वैसे मैं बताना चाहूंगा हनी सिंह को ये बात कि म्यूजिक लेबल्स ना सिर्फ एक आर्टिस्ट को, बल्कि कई दफा ऐसा भी होता है अगर कोई न्यूज चैनल एक स्टोरी प्रमोट करते हुए उनके म्यूजिक का कहीं थोड़ा सा भी अंश ले लें, तो म्यूजिक लेबल्स इस तरह से बिहेव करने लग जाते हैं जैसे कि वो लुट पुट गए हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर उनके म्यूजिक के बारे में कुछ अच्छी बातें कही जा रही हैं, जहां उनके गाने का कुछ 2, 5, 10 सेकंड का हिस्सा लगाया जा रहा है, तो उसके लिए भी उन्हें रॉयल्टी चाहिए होती है। यही है अजब गजब बॉलीवुड। जुड़ रहे, सुनते रहे हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर बॉलीवुड ट्रेल।

आपने देखी होगी ये फिल्म, अगर नहीं देखी है तो अच्छा ही किया है। बहुत अच्छी तो नहीं थी, ठीक ठीक थी। आई हैव सीन दिस मूवी बट समहाउ टाइम पास। ओके चलिए, हम बात कर रहे हैं आपसे कि हनी सिंह की जो हमने बात छेड़ी है, वैसे अगर आपको पता ना हो तो जो गाने हम यहाँ पे भी बजाते हैं, हर गाने के लिए आपको व्हेन यू प्ले वन सॉन्ग ऑन एयर तो ऑब्वियसली उसकी कुछ रॉयल्टी होती है जो उस म्यूजिक कंपनी को जाती है। ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिसर्च, हमने कहीं सुना था कि 20 साल के बाद म्यूजिक रॉयल्टी फ्री हो जाता है, बट यहाँ तो कुछ 60 साल का दौर बताया जा रहा है। खैर इस पे थोड़ी कंफ्यूजन है कि एक्चुअली कितने साल के बाद कोई म्यूजिक जो आप बनाते हैं इट्स फ्री टू यूज, आपको पता हो तो आप जरूर बताइएगा। वैसे हाँ, यहाँ पे मैं सवाल जो पूछने जा रहा हूँ वो तो ये है कि बॉलीवुड सरताज अगर बनना चाहते हैं आप आज, तो इट्स वेरी सिंपल, आप हमें कीजिए व्हाट्सएप 9868107070 पर। और हमारा आज का सवाल बड़ा सिंपल सा है। एक मूवी आई थी 2003 में तेरे नाम, सलमान खान ने उसके अंदर जो रोल प्ले किया है, जो किरदार किया है, उस किरदार का आपने नाम बताना है। और सिंपल, हो सकता है आज आप बन जाएं बॉलीवुड में बॉलीवुड सरताज।

0: कौन कहाँ मिलेगा और कब बिछड़ेगा, ये तो कोई नहीं जानता बाबूमोशाय। हम सब रंगमंची कठपुतलियां हैं ना, ऐसा एक डायलॉग था, काका जी कह गए। और वो मूवी, वो एक अलग दौर था, और आजकल की मूवीज जो हैं वो एक अलग दौर है। अभी कुछ दिन पहले मैं घर पे ही कॉकटेल 2 देख रहा था, एंड यार मैं 1 घंटे में पूरी नहीं देख पाया। मैं आया टू स्विच पर कुछ और देखने लग गया। वो पकड़ नहीं रह गई है, पता नहीं स्क्रिप्ट्स में क्या बात है भाई। कुछ स्क्रिप्ट्स पे भी काम कीजिए, अदरवाइज ब्यूटीफुली शॉट, अच्छा लगा देख के। विदेश के आप नज़ारे देख सकते हैं। आपको ट्रेवल करना है ना, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप मूवीज के थ्रू भी देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, हम आपको बताएंगे आज किसका बर्थडे है, वो थोड़ी देर में बताएंगे, और वो सवाल एक बार फिर से दोहराएंगे जिसे हम कहते हैं बॉलीवुड सरताज। तो हो सकता है आप लकी हो, बहुत से मेरे पास यहाँ पर मैसेज जाना चालू हो गए हैं। मैं बिना देखे कह रहा हूँ, बिकॉज मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत सारे मैसेजेस आना चालू हो गए होंगे। और जिनको नहीं पता, नंबर एक बार फिर दोहरा देते हैं, 9868107070, 9868107070, 1078710 70 70। इस पे व्हाट्सएप करना है, सवाल फिर से दोहराऊंगा। छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, लौट के आएंगे। आप सुनते रहें बॉलीवुड ट्रेल्स।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: एनसीआर ईपीई से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: हिमालय की गोद से लेकर
6: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
5: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
6: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
5: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
6: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
5: तो सुनना ना भूलें
6: रेनबो डेस्टिनेशंस
5: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
7: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
8: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
9: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
8: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
9: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो,

0: रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जी हाँ, हाई हील पे नचे तो तू बड़ी जचे। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। कभी कभी ऐसा लगता है कि मन भी जो है एक बच्चा है, बच्चा है क्यों, आई थिंक स्कूली बच्चा है। इट वॉज सच वंडरफुल ईयर्स, जब हम स्कूल में पढ़ते थे कितना मजा आता था। नहीं हाँ, अब अगर आज के स्टूडेंट से पूछे तो हो सकता है दिल से समथिंग एल्स। लेकिन मैं इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि आप बने बॉलीवुड ट्रेल्स में आज बॉलीवुड सरताज। उसका सिंपल सा सवाल है, आप मुझे बताइएगा कि एक मूवी आई थी 2003 में तेरे नाम, उसमें सलमान खान ने जो रोल जो किरदार प्ले किया था उसका नाम बताइए और हमें व्हाट्सएप कर दीजिए 9868107070 पर। और हो सकता है कि मैं आपको आज बना दूं बॉलीवुड सरताज। और अपने फोन को रखिएगा अपने पास, तो यहीं रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपके साथ आकाशवाणी रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ रंजन। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

जी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स, और स्टेशन आपको पता ही है, हमारा स्टेशन है 102.6 एफएम रेनबो। आप चाहें तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप जो है वो है बड़ा सिंपल, न्यूज ऑन एयर। और उसके बाद ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाएंगे अपने स्मार्टफोन के माध्यम से, हमें आप अपनी जेब में अपने दिल के करीब लेके अपने साथ ट्रेवल कर सकते हैं। तो फिर हमारा ये साथ बना रहेगा 24/7।

जी आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल से, मैं हूं आपके साथ रंजन। और आज है किसी का बर्थडे, और वो कोई या वो किसी कौन है, वो कौन खास है, उनका नाम है भूमिका चावला। इन्होंने आज 21 अगस्त का दिन है, इनकी आज जन्मदिन है, तो हम इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। विश हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे भूमिका अभी मूवीज से दूर है। एक मूवी आई थी जो मैंने अभी उसका जिक्र भी किया, तेरे नाम 2003 में, इट वॉज अ गुड मूवी, आई थिंक इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर। सलमान इनके साथ हैं, उससे जुड़ा हमने सवाल भी आपसे पूछा। इसके अलावा उन्होंने बहुत सी साउथ के अंदर बहुत फिल्में की हैं, हिंदी में भी कुछ एक फिल्में की हैं, लेकिन तेरे नाम में जो इन्होंने छाप छोड़ी वो वाकई काबिले तारीफ है। सो ऑल वी कैन से इज दैट दिल्ली की ही लड़की हैं ये भूमिका, दिल्ली में रही, यहीं पढ़ ली, बड़ी, उसके बाद शी मूव टू मुंबई, जहां पे इन्होंने ना सिर्फ मूवीज में काम किया बल्कि कुछ एक सीरियल्स में भी, कुछ चैनल्स के लिए इन्होंने शुरुआत में काम किया। शी स्टार्टेड हर करियर एज अ मॉडल। तो फिर हम यही कहना चाहेंगे कि

का दिन भूमिका आपके लिए आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से ये गाना आपकी तरफ एज अ बर्थडे प्रेजेंट, इससे ज्यादा हम देवी कह सकते हैं। थोड़ी देर में हम लेके आएंगे आपके सामने हमारे आज के बॉलीवुड सरताज को। सुनते रहें आकाशवाणी, आकाशवाणी का रेनबो चैनल बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: जी हाँ, मखमली आवाज उदित नारायण की। और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स। हमारे साथ हमारे बॉलीवुड सरताज इस समय जुड़ गए हैं। लेट्स से हम उनसे बात करने चाहते हैं। क्या वो ऑन एयर हैं? हेलो
1: जी सर। जी सर,
0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: थैंक यू सर। राजीव कुमार सर।
0: राजीव कुमार जी, मेरठ से।
1: जी सर।
0: वंडरफुल। और क्या बात है, आपने सही जवाब दिया। जवाब तो बहुत से लोगों ने सही दिया है, लेकिन
1: जी
0: आज
1: सर।
0: आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज। एक बार फिर से दोहरा दीजिए कि तेरे नाम में सलमान खान ने जो किरदार प्ले किया था उसका नाम क्या था मूवी में?
1: राधे मोहन सर।
0: अरे वाह सर, वाह, राधे मोहन, राधे मोहन। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप बनते हैं बॉलीवुड सरताज, तो खास क्या करोगे राजीव? आज पहली बार बने हो?
1: जी हाँ सर, पहली बार बनाऊँ सर।
0: अच्छा, ऐसा क्या खास करेंगे? कुछ मुंह मीठा कर लीजिए। आप तो कन्फेक्शनरी की
1: जी सर।
0: दुकान दुकान बता रहे हैं, तो
1: जी
0: ज्यादा
1: सर।
0: दूर भी नहीं जाना पड़ेगा।
1: जी सर।
0: अच्छा देखिए, कुछ लोगों ने ना आधा ही नाम बताया, कुछ लोगों ने सिर्फ राधा लिख के भेजा। तो वैसे देखिए, राधा में मोहन छिपे हैं तो मुझे पता है, लेकिन यार किरदार पूरा बताओगे, आधे जवाब में
1: हाँ
0: तो
1: सर।
0: आपको नहीं, मैं किसी और को नहीं बना सकता था। तो खैर,
1: जी
0: आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। बट आपसे मैंने जब कॉल किया, मैंने आपको, आपने कहा मैं रेडियो बंद करके मस्त हो गया था अपने काम में। तो भाई, आपको क्या विश्वास नहीं था जब मैं कह रहा हूँ कि आप बन सकते हैं आज? तो आज आपका लकी दिन है दोस्त।
1: जी हाँ सर।
0: हाँ, तो आगे से ध्यान रखिएगा,
1: जी सर।
0: रेडियो बंद नहीं होना चाहिए। चलिए
1: सर मैंने
0: ठीक।
1: पोस्ट कर दिया था। मैंने कहा सर,
0: हाँ बताइए बताइए।
1: मैंने सर पोस्ट कर दिया था एफएम अपना।
0: हाँ
1: मैंने कहा मुझे फोन आया, मैं कहा फिर मैं पास ही खड़ा था एफएम के, मैं कहा आवाज साफ नहीं आएगी। थैंक
0: चलिए ठीक है, इसी तरह से यूं ही प्यार से हमें दिन भर सुनते रहें। थैंक यू सो मच।
1: यू सर। वेलकम।
0: ऑल राइट, तो बस अब यही कहना चाहेंगे कि बॉक्स ऑफिस की रिपोर्ट भी आपको हम लगे हाथ दे देते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौट के आएंगे। आपको बताता हूं कि बॉक्स ऑफिस पे कौन सी फिल्म ने क्या किया है धमाल और कौन कर रही है कमाल।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
10: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
11: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
10: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
12: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
10: ठीक है,
12: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
11: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
10: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
13: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
10: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
11: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
10: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
11: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
10: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
11: किसी भी

0: लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सुन रहे हैं बॉक्स ऑफिस की खबर बताने हम आपको जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। और दो फिल्में रिलीज हुई थी अभी कुछ दिन पहले, लास्ट वीक, बंटवारा 1947, और इसका जो अभी तक हफ्ते भर में जो बिजनेस हुआ है लगभग 45 करोड़ के आसपास, लगभग सिमट गया है। और इसको पछाड़ दिया है अवारा पंटू ने, जिसमें इमरान हाशमी स्टार कर रहे हैं। समहाउ पीपल हैव लाइक दैट मूवी मोर देन बंटवारा। और एक दिक्कत और बताई जा रही है, इट इज बीन सेड इन द प्रेस के आमिर खान साहब ने, क्योंकि इस मूवी के अंदर पैसे लगाए, उनका प्रोडक्शन से ये मूवी बनी है, तो ओटीटी पे जो वो बेचना चाह रहे थे, वो समहाउ सनी के हिसाब से वो चाह रहे थे कि इसके राइट्स बेच दिए जाएं, जो आमिर ने नहीं दिए फॉर अ सर्टन अमाउंट। खैर, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके आसपास जो लोग हैं वो आपकी केयर नहीं करते,

जी हाँ, सरकास्टिक स्माइल में ऐसा ही कुछ मैसेज लिख के भेजा है सुहै ने ऑस्ट्रेलिया से। अरे भाई, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था रेडियो बंद नहीं करें और हमें पूरा दिन सुनते रहें, बिकॉज ऐसा ही हमारे जो सरताज बने हैं वो ये भी कह रहे थे कि दिन भर सुनते हैं। इसीलिए मैंने कहा भाई आप तो आई नो आप स्माइल कर रही हैं, स्माइली, और इस समय तो ऑस्ट्रेलिया टाइम डिफरेंस है 5-1 घंटे आगे। अच्छा, अगर आप हमें सुन रही हैं। खैर, अगला कार्यक्रम रहेगा प्लेट कूल, आशीष इब्राहिम आपके साथ रहेंगे। फिलहाल रंजन को दीजिए इजाजत, मैं आपसे मुलाकात करूंगा 1 बजे। लेकिन चलते चलते बता दूं कि एक फिल्म बनाई जा रही है गांधी जी पर, जिसमें गांधी जी का किरदार प्ले करेंगे मनोज

0: वाजपेयी। जैसे ही खबर मुझे पता लगी और मुझे सही में मनोज के अंदर गांधी जी की वो छवि भी दिखने लग गई, और दीपिका पादुकोण ने जो मूवी छोड़ी थी स्पिरिट, आई थिंक दैट वाज फॉर द रीजन कि वो 10% डिमांड कर रही थी प्रॉफिट्स में से, सो दीपिका को उस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा।
1: जैसे हाँ
0: अगर मैं मूवी बनाऊंगा तो दीपिका, आई प्रॉमिस यू आई विल गिव यू 20% ऑफ द प्रॉफिट्स। टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं।

मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: प्रोग्राम पैगाम दी रिकॉर्डिंग संबंधी सूचना। श्रोतियों तुहानू दस दईए कि मिति 23 अगस्त दिन एतवार नूं सवेरे 7 बजे प्रोग्राम सजरी सवेर दे तहत चलण वाले सिलसिले पैगाम दी रिकॉर्डिंग दिन शुक्रवार मिति 21 अगस्त नूं शाम 4 बजे कीती जावेगी। जेकर तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडे पैगाम प्रोग्राम पैगाम च शामिल होण तां अपनी शेरो शायरी रचना सानूं भेज दिओ पैगाम दे नंबर 77173-73146 ते। दिन शुक्रवार मिति 21 अगस्त शाम 4 बजे तों पहलां पहलां प्रोग्राम दा प्रसारण समा 23 अगस्त दिन एतवार सवेरे 7 बजे।
0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: जे ना हुंदी सन ताली विच लीक मन जूर नू पे।

गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

दोस्तो हुण आप जी दी सेवा दे विच भाई लालो दी इमानदारी दूजी साखी दी सांझ पाउण लग्या। भाई लालो अते मलिक भागो लाहौर विच लोकां नू इमानदारी नाल जिउणा सिखाउण तो बाद श्री गुरु नानक देव जी अपने माता पिता नू मिलण लई तलवंडी वापस आ गए। फिर थोड़े समय लई ठहरण तो बाद

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਜਗ ਬੀਤੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਸੀ ਗੁਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦਾ ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
1: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं। गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: ਕੱਟ ਵਿਆਜ ਤੇ ਲੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਪ ਤੋਂ। ਵਾਹ,
3: ਫਸਿਆ। ਅਣਜਾਣ ਐਪਸ ਤੋਂ ਬਚੋ।
4: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
3: ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
5: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ।
0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ FM ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜੀ 1:09 ਤੇ 45 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ 1:10 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हूं तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहायश ते भारत सरकार दे सकत्तरां नाल तीजी उच्च पदरी मीटिंग दी प्रधानगी कीती ते बुनियादी ढांचा ते संपर्क सुरक्षा विदेश मामलियां अते शासन नाल संबंधित मंत्रालयां ते विभागां दे भविख दे कार्ज एजेंडे ते चर्चा कीती। कल हुई इस मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने सकत्तरां नूं इस बारे लंबे समें दे दृष्टिकोण नाल सोचण दी अपील कीती। देश के भविख नूं किवें ढालना चाहिए, वधेरे अंतर कार्यशीलता ते डेटा की प्रभावशीलता वरतों की मंग करदिआं श्री मोदी ने कहा कि डेटा एक राष्ट्रीय असासा ते भविख लई एक वसीला है। अधिकारियों विच गैर रस्मी गलबात ते टीम भावना बनाउण की महत्ता नूं उजागर करदे हुए श्री मोदी ने नीति निर्माण विच नवें दृष्टिकोण लिआउण लई सरकारी विभागां, यूनिवर्सिटियां ते नौजवानां दरमियान वधेरे शमूलियत की मंग की। उन्होंने देश की रक्षा सनत नूं होर मजबूत करन ते इस नूं विश्व पद्धर ते वधेरे मुकाबलेबाजी वाला बनाउण की जरूरत ते भी जोर दिता। इस मीटिंग दौरान सकत्तरां ने खेतरां दीआं तरजीहां, उभरियां चुनौतियां ते लागूकरण मुद्दियां ते अपने तजर्बे सांझे कीते। कैबिनेट सकत्तर, मुख मंत्रालयां ते विभागां दे सकत्तर ते प्रधानमंत्री दफ्तर दे सीनियर अधिकारी इस मीटिंग विच शामिल होए। पंजाब विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने यूएन महिला शी लीड्स स्टेट्स वर्कशॉप च सूबे दे वख-वख हिस्सों तो आईआं महिला आगुआं नूं संबोधन कीता। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि उन्हां वर्गीआं महिला नेता ना सिर्फ अपने भाईचारिआं च बदलाव लिआउण लई समर्थ ने, सगों सारे नागरिकां दीआं इच्छावां ते शासन नूं आकार देण विच वी अहम भूमिका निभा सकदीआं ने। शी लीड्स इक समर्पित प्रोग्राम है जो जनतक ते राजनीतिक जीवन च औरतां लई समर्थावां ते नैटवर्क बणाउंदा है। 47 भागीदारां दे इस समूह च पंजाब भर तों जमीनी पद्धर ते तब्दीली ल्याउण वाले चुने हुए नुमाइंदे ते प्रशासक शामिल सन। पंजाब पुलिस अते हार्टेक फाउंडेशन दे सहयोग नाल लिंग संवेदनशीलता अते मेन स्ट्रीमिंग आफ विमेन इन पंजाब पुलिस विषय ते आधारित साल भर चलण वाली सिखलाई पहलकदमी कल महाराजा रणजीत सिंह पंजाब पुलिस अकादमी फिलौर विखे मुकम्मल हुई। इस सिखलाई प्रोग्राम दे आखिरी दिन मुख मेहमान वजों पहुंचे इंडियन एक्सप्रैस दे राष्ट्रीय संपादक उत्तरी मनराज करीवाल शर्मा ने महिला अधिकारियों नूं संबोधन करदिआं कहा कि सिखर ते पहुंचण लई बिना किसी समझौते दी पूर्ण समर्पण दी जरूरत हुंदी है। उन्हां ने महिला पुलिस कर्मचारियों नूं अडोल रहण, अपनी पेशेवर अहमियत बनाउण ते कामकाजी थां ते लिंग आधारित जां अनुचित टिप्पणियां खिलाफ डट के बोलण की अपील की। इस मौके बोलदिआं स्पैशल डीजीपी कम्यूनिटी अफेयर

प्रोग्राम टेलीफोन मिलाओ जी सुन रहे तमाम श्रोतियों नूं तुहाडी रेडियो दोस्त ते प्रोग्राम दी होस्ट रविशा दा प्यार भरिया नमस्कार जी। श्रोतियो मिला लो फिर स्टूडियो दा फोन नंबर 2240-331 ते सुनो अपनी पसंद दे हिंदी फिल्मी गीत। प्रोग्राम दा आगाज करदे हां इस प्यारे जे गीत दे नाल।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: हर बड़ा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन, ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
1: तो आज ही विजिट करो अपने नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
3: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं। गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं।
4: जी प्रोग्राम चल रहा है, टेलीफोन मिलाओ जी। और कॉल आ चुकी है साढ़े स्टूडियो दे विच, ते देखते हैं केड़े कॉलर साढ़े नाल जुड़े ने ते कित्थों गल कर रहे ने।
5: हेलो
6: नमस्कार मैडम जी।
4: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
6: सतीश कुमार बंसल बोल रहे हैं जी, पिंड सामतखेड़ा नेड़े मंडी डब वाली तो जी।
4: जी बहुत बहुत स्वागत है आज दे इस प्रोग्राम दे विच, ते गीत केड़ा सुनोगे?
6: गीत

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउण लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुण तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउण लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुण तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच,

0: हर बड़ा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तो आज विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਫ ਐਮ ਬੈਨ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਐਪ ਤੇ।
1: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
3: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
2: तो अज विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
4: टोल फ्री नंबर 1800420223।
1: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
3: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
2: तो अज विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
4: टोल फ्री नंबर 1800420223।
5: प्रोग्राम चल रहा है टेलीफोन मिलाओ जी। स्टूडियो की कड़ी मुताबक वक्त हो रहा है 1:35:44 का। देखते हैं केड़े कॉलर साढ़े नाल जुड़े ने ते कित्थों बोल रहे ने। हैलो।
6: हैलो मैडम रविशा जी, बहुत ही प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल
5: जी। सत श्री अकाल जी, ते अपना नाम दस दियो जी।
6: मक्खन सिंह, पिंड बल्लो, जिला बठिंडा जी।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है। ते गीत केड़ा सुनोगे अज दे इस प्रोग्राम च?
6: ਗੀਤ ਮੈਡਮ ਦਿਲ ਫਿਲਮ ਚੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਡਮ ਜੀ।
5: ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਸੈੱਟ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗੀਤ।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं।
1: अगली कॉल है नेहा जी, देखते हैं कौन ते कितों जुड़े ने साडे नाल। हेलो हेलो हेलो।
2: हाँ जी रीता जी, आप जी रीता जी,
1: हाँ जी नमस्कार जी, अपना नाम दस दियो।
2: मैं जी हेमंत सिंह बोल रहा, पिंड ढड्डे डिस्ट्रिक्ट
1: जी। बहुत बहुत स्वागत है, तो गीत क्या सुनोगे?
2: गीत दरबार से कोई भी गीत सुना दे
1: जी। आ रहा है तो रेडियो सेट से, तो पसंद से एक गीत।

0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
3: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष

0: फरहतनाज। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
1: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसेह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से ये फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
3: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
4: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के

0: रामपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमरीकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स ICT बैठक से अलग डिजिटल

0: नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਖਬਰਾਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਫ ਐਮ ਬੈਂਡ 101.1 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਐਪ ਨਿਊਜ਼ ਔਨ AIR ਤੇ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਮਾਂ 2:30 ਤੇ 23 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਰੀਲੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ।

प्रोग्राम सुरीली दोपहर सुन रहे तमाम श्रोतियों नूं सीमा कटारिया वालों प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल ते आदाब। ते मैं हाजिर हाँ अज का यह प्रोग्राम सुरीली दोपहर लैके जी। प्रोग्राम के तहत शामिल करने ने असी बहुत सारे सुनेहे खत जो कि तुसी सुनेहे सानू वट्सअप मैसेज राही भी भेजे ने, ते बहुत सारे खत भी मेरे हाथ दे विच ने जो कि मैं प्रोग्राम के तहत शामिल करूँगी जी। ते एक बार कुछ पलों लई मैं तुहाडे खतां नूं तुहाडे सुनेहां नूं थोड़ी जी तरतीब दे लिया, तो उदों तक असी प्रोग्राम का आगाज करते हाँ इस गीत नाल।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: आकाशवाणी बठिंडा दे रब वर्गे प्यारे स्रोतियो, सौन दे महीने विच जद पेके गईयां कुड़ियां नूं सहेलियां मिलन आउंदियां तां हासे ठठे गल्लां बातां ते अपने पन नाल रौनकां लग जांदियां ने। अते एसे ही विषय ते अनमीत कौर ते बलजीत शर्मा जी लैके आ रहे ने प्रोग्राम पिंडां आले दे तहत विशा त्रिंजन।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1800420223।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आप सभी सखियों का स्वागत है। सखियों, सावन के महीने में वो कौन सी हमारी सहेली होगी जिसे अपने मायके की या पीहर की याद नहीं आती? दोस्तों के साथ वो यूं बेहिसाब घूमना, बारिश में भीगना, फिर भुट्टे खाना और कई कई आयोजनों में नृत्य करना, मेले में जाना और बेहिसाब हंसी मजाक शरारतें। तो इन्हीं यादों को याद करते हुए और रक्षाबंधन पर भाई का इंतजार करते हुए या मायके जाते हुए हम सब सखियां जुड़ चुकी हैं एक साथ, कहां? विविध भारती के स्टूडियो में। और मैं मौजूद हूं आपकी दोस्त सहेली दीपा महेश्वरी। आज आपकी इस सखी से बातें होंगी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बज उठी फोन की घंटी, तो देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैडम। नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए किससे बात हो रही है हमारी और कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: नागपुर से दीपा बोल रहे हैं हम।
0: नागपुर से दीपा, वाह क्या बात है दीपा जी। क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हाँ, रक्षाबंधन आ रहा ना मैडम।
0: जी जी, तो हम ये जानना चाहते हैं दीपा जी आपसे कि रक्षाबंधन पे इस वर्ष आप क्या करने वाली हैं? आप जाने वाली हैं मायके या भाई आने वाले हैं? क्या होने वाला है?
1: भाई कोई बुलाया इस साल।
0: अच्छा, क्या बात है। तो उन सबकी तैयारियां होंगी घर में?
1: हाँ, ननद भी रहती है इधर ही, वो भी आएगी। अच्छा, और भाई भी आएगा।
0: अच्छा, तो ननद भी आपकी यहीं रहती है नागपुर में?
1: हाँ,
0: और आपके भाई
1: में
0: भी
1: रहती है। भैया भी आएंगे।
0: जी, तो ये बताइए कि रक्षाबंधन त्योहार से आपको क्या याद आता है? पुरानी कोई बात आपकी बचपन की, क्या चीज जो आपके चेहरे पे एक हंसी ले आती है?
1: पुरानी यादें तो बहुत है मैडम। अब जैसे शादी हो गई सभी बहनों की, तो हम मैं छोटी थी, सबसे अकेली सबको भाइयों को राखी बांधती। पांच भाई थे।
0: अच्छा।
1: भाई के लड़के, फिर भतीजे, सबको राखी मैं अकेली बांधती थी। फिर बहुत याद आती है रक्षाबंधन पे मैडम।
0: ये बात तो सही है। तो आप अकेली ही बहन है पांच भाइयों के बीच?
1: नहीं, चार बहन है सबकी। सब बड़ी बड़ी शादी हो गई है सबकी, फिर छोटी थी।

0: मैं सबसे
1: अच्छा, और उसके
0: बहुत
1: अलावा दीपा जी क्या करती हैं
0: हाउस
1: आप?
0: वाइफ है मेरा नाम,
1: हाउस वाइफ है।
0: घर में ही रहते हैं, बच्चे हैं, बहू है, लड़के, दुकान है अपनी मैडम,
1: अच्छा जी, किस चीज की?
0: ये पान शॉप की है मैडम।
1: अच्छा, तो इसमें भी सारा दिन इसकी भी बड़ी तैयारी करनी होती होगी घर में, है ना?
0: हाँ दुकान में ही करते हैं सब, हम घर में नहीं करते कुछ।
1: अच्छा, तो आप घर का सारा काम संभालती हैं। आज ये बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: तिरंगा पिक्चर का मैडम सुना ली है, इसे समझो न रेशम का तार भैया।
1: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: वैशाली भाटी से। हम
0: वैशाली भाटी। तो वैशाली जी, बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: इंदौर से।
0: इंदौर से। अरे वाह, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या करती हैं, कैसा चलता है आपका दिन? और इन दिनों तो त्योहारों का मौसम है ना, इंदौर में तो त्योहार सारे खूब अच्छे से मनाए जाते हैं।
1: हाँ, बहुत बढ़िया है।
0: जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: हमारा तो ऐसा कहीं नहीं, अभी हमारी नई नई शादी हुई है।
0: अच्छा, अरे वाह, तो ये तो बहुत सारी बातें बताने की हो गई हैं। तो कैसा लग रहा है नए परिवार में आके, इस नए परिवेश में आके?
1: बढ़िया लग रहा है।
0: अच्छा लग रहा है। तो इंदौर से पहले आपका मायका कहाँ था फिर? कहाँ से शादी
1: अपन
0: हुई?
1: महाराष्ट्र से जलगांव।
0: जलगांव से आप इंदौर आ गई हैं, तो ये इंदौर नया शहर है आपके लिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब कुछ रोड्स और गलियों के बारे में कुछ अता पता चला होगा, है ना?
1: हाँ, बहुत सारा बढ़िया लगता है।
0: और ससुराल में कौन कौन है आपके साथ यहाँ पर?
1: मेरे साथ मेरे सास ससुर और मेरे पति और मैं।
0: अच्छा, पहली राखी

0: आएगी शादी के बाद या ये दूसरी वाली आई आपकी?
1: पहली आएगी, पहली आएगी।
0: पहली आएगी। तो रक्षाबंधन के बारे में बताइए, क्या आप इस बार जाने वाली हैं जलगांव या यहीं रहेंगी, कैसा क्या होने वाला है?
1: नहीं, अपने यहाँ कान्हा जी आने वाले ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: हाँ, इसलिए अभी जाना बंद है।
0: तो जाना बंद है तो।
1: अभी छोटा सा बेबी आएगा ना।
0: ओ अरे वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: एक हमारे कान्हा जी बाबू आ रहा है, उसके लिए कोई गाना सुना दो। अच्छा
0: तो चलिए सुनते हैं।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: माया जाधव।
0: माया जी कहाँ से बात कर रही हैं?
1: नासिक।
0: नासिक से बोल रहे हैं आप?
1: मैं बचपन से कार्यक्रम सुनती हूँ विविध भारती से, मैं बहुत ही बड़े फैन हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम भी आप सब भी सहेलियों के फैन हैं, क्योंकि आपकी कॉल का हम लोग हमेशा हर मंगलवार को इंतजार करते हैं, है ना? तो कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप, बताइए।
1: पारस मनी फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ, आज का हुआ रानी चेहरा।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर आ गए हैं कॉल का इंतजार करते हुए। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: नीता महाजन, भवानी सागर, देवास से।
0: जी, देवास से बात कर रही हैं आप, भवानी सागर से। तो अपने बारे में कुछ बताइए नीता जी। राखी का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन का, तो क्या क्या तैयारियां चल रही हैं घर पर?
1: रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है तो थोड़ी बहुत घर में साफ सफाई करेंगे, मिठाई वगैरह बनाएंगे।
0: अरे वाह, तो क्या मिठाई बनाने वाली हैं आप?
1: चक्की बना सकती हूँ मैं बेसन की।
0: हाँ, वो तो बहुत प्रसिद्ध है उस तरफ की, और बड़ी स्वादिष्ट ये मिठाई होती है ना?
1: हाँ।
0: जी, तो घर में और कौन कौन है, अपने बारे में भी कुछ बताइए।
1: तो मेरी तीन बेटियां हैं, तो दो की शादी कर चुकी हूँ मैं और एक पढ़ाई कर रही है अभी।
0: जी, तो दो बेटियों की
1: हाँ
0: शादी हो गई है, तो वो आने वाली हैं मायके?
1: हाँ मायके आएगी ना, दोनों बेटियां आएगी।
0: जी, और छोटी बेटी किस चीज की पढ़ाई कर रही हैं?
1: वो बीकॉम कर रही है।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब तो आपको इंतजार होगा अपनी दोनों बेटियों के आने का।
1: हाँ वही इंतजार चल रहा है ना।
0: तो मन खुश रहता होगा इन दिनों।
1: हाँ मन खुश रहता है ना।
0: और आज आप
1: हाँ
0: ये बताइए कि कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: नदिया के पार का, कौन दिशा में चला रहे।
0: तो चलिए सुनते हैं नदिया के पार फिल्म का ये गीत, कौन दिशा में लेके चला रे बटुया।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, मैं रेखा वर्मा बोल रही हूँ। मैं उज्जैन से।
0: उज्जैन से रेखा वर्मा, क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन का त्योहार बिल्कुल नजदीक आने वाला है, घर में बहुत सारी
1: बिल्कुल,
0: तैयारियां होती हैं।
1: रक्षाबंधन की तैयारी चल रही है मैम। आगे हम राखी वगैरह लेके आ गए हैं मार्केट से, क्योंकि फिर उज्जैन में काफी भीड़ है यहाँ पर।
0: इस बार तो कई तरह तरह की राखियां हैं बाजार में,
1: हाँ,
0: हमने भी
1: बहुत
0: देखी।
1: सुंदर सुंदर राखियां हैं मैम, और हम फर्स्ट में ही जाके ले आए हैं ताकि और अच्छी मिल जाए हमको।
0: अच्छा, तो आप थोड़ा पहले ही ले आई ताकि बाद में ना भीड़ मिले और
1: जी,
0: राखियों का चुनाव भी खूब अच्छे से आप कर
1: खूब अच्छे
0: सके।
1: से कर सकते हैं अपन।
0: हाँ, ये बात तो सही है। जीवन में क्या चल रहा है, क्या करती हैं आप, अपने बारे में बताइए।
1: मैडम, मैं हाउसवाइफ हूँ
0: अच्छा,
1: बस, मतलब बढ़िया है, ऐसा कुछ नहीं। और पार्लर चलाती हूँ, घर में ही चलाती हूँ बस।
0: बहुत सुंदर बात है ये तो। और रक्षाबंधन से आपके कोई यादें जुड़ी हों, बचपन की कोई बात, या इस दफा आप क्या करने वाली हैं, जाने वाली हैं मायके या भाई आएंगे, क्या है
1: नहीं
0: वो
1: नहीं
0: बताइए।
1: मैम, जाऊंगी मैं। क्या है कि एक ही बहन हूँ 6 भाइयों के बीच में, तो
0: अरे वाह, तो घर में तो सब
1: इसलिए।
0: आपको बहुत भाग्यशाली कहते होंगे, है ना?
1: जी जी मैम,
0: ऐसा हो जाता है जहां पे भाई हो अधिक और बहन एक हो, उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है।
1: जी मैम,
0: तो कहाँ है आपका मायका?
1: मेरा मायका मैम ब्यावरा बचोर
0: अच्छा,
1: राजगढ़ जिले में है।
0: तो आप मिठाई मेवे सब कुछ लेकर जाएंगी?
1: बिल्कुल मैम,
0: जी।
1: बहुत इंतजार रहता है, भतीजी उनको भी, भतीजे उनको भी, मेरा वो आने वाली है मैम। कितनी भी उम्र हो जाए, मायके में जाने के बाद व्यक्ति वापस वैसा के वैसा, ऐसा लगता है जैसे अपन बचपन में आ गए वापस।

0: बिल्कुल सही कहा।
1: मेरी मम्मी नहीं है, भाभियां हैं, लेकिन मेरी भाभियां ऐसी हैं मैम कि अभी तक राखी करने वो नहीं जाती हैं, क्योंकि मैं जाती हूँ ना यहाँ से।
0: यानी कि भाभी ने माँ का रूप ले
1: जी
0: लिया
1: मैम,
0: है ना।
1: वो इंतजार करती है दीदी आ जाएंगी, उसके बाद में फिर बाद में चले जाएंगे, क्योंकि कोई की एक बहन है, कोई दो बहनें हैं, तीन बहनें हैं, तो वो इंतजार करती है कि हमारी तो एक ही है।
0: ये बात तो कितनी अच्छी बात है ना, घर में की सारी भाभियां आपका इंतजार करती
1: मेरा
0: हैं
1: इंतजार करती है मैम, एक भी नहीं जाती है।
0: कि कब रेखा दीदी आएंगी और इस घर में फिर से वही ऊर्जा और हंसी मजाक और एक प्रसन्नता का माहौल बन जाएगा, है ना।
1: तो सबसे बड़ी बात तो ये है मैम कि आज वो माँ की जगह मतलब बैठी है मेरे लिए, इंतजार
0: जी
1: करती है, तो मुझे उसकी खुशी और बहुत ज्यादा होती है।
0: तो हम तो चाहते हैं कि ये प्रेम आपका हमेशा इसी तरह बना रहे और हर घर में ये भाभी और ननद का प्रेम इसी तरह बने जैसा रेखा वर्मा के घर में। तो रेखा जी
1: जी,
0: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप।
1: मजबूर पिक्चर का सुनना है। देख सकता हूँ मैं तुझे कुछ भी होते हुए, नहीं देख सकता तुझे रोते हुए।
0: तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर इंतजार कर रहे हैं कॉल्स का। कार्यक्रम चल रहा है। हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: जी दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: क्या बात है, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से रंजीता जी बोल रहे हैं। कैसी हैं आप?
1: जी दीदी मैं ठीक हूँ।
0: और क्या चल रहा है इन दिनों? रक्षाबंधन बस बिल्कुल नजदीक ही आने वाला है ना?
1: मार्केट में शोर है, रक्षाबंधन है, राखी का त्योहार आने वाला है। सभी लोग मतलब अपने भाई को राखी बहन पहनाने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और त्योहार का मतलब बड़े ही मतलब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, अभी तो बाजारों में हर दुकानों पे रक्षाबंधन की राखियां ही आपको दिखाई देंगी, है ना?
1: जी
0: तो आप खरीद लाएं या आप जाने वाली हैं अपने मायके या भाई आने वाले हैं, क्या होने वाला है इस बार?
1: नहीं दीदी, मैं जाती हूँ अपने मायके अपने भाई को राखी पहनाने के लिए।
0: अच्छा, तो वो तो इंतजार कर रहे होंगे आपका कि कब आएंगी।
1: जी।
0: और कई बार ऐसा भी हो जाता ना कि आप कहेंगी कि नहीं, समय कम है, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए आऊंगी, और फिर मायके से सब लोग जिद करते, नहीं तुम अब के आओ तो 3-4 दिन ज्यादा रुकना।
1: जी, ऐसे होता ही है। लेकिन क्या है, हम सभी लोग एक रिश्ते की डोर से बंधे हैं, तो जैसे कि मैं अपने भाई को राखी पहनाने जाती हूँ, वैसी मेरी भी भाभी है, वो भी अपने भाई को राखी पहनाने के लिए जाते हैं, तो सभी का सोच के जाना पड़ता है दीदी। तो मैं हमेशा एक दिन पहले राखी पहनाने जाती हूँ, फिर उसी दिन हम लोग रक्षाबंधन के दिन राखी पहना के हम लोग वापस होते हैं। तो मेरे मिस्टर हैं, उनको भी उनकी बहनें राखी पहनाने आती है और मेरी भाभी भी अपने भाई को राखी पहनाने जाती है।
0: तो ये तो कितनी अच्छी बात है ना, आप हर तरह का देखिए रिश्तों में कितना सुंदर संतुलन बना के रखती हैं कि
1: जी
0: आपके घर में भी हो जाए, आपके मायके में भी आप अपने भाइयों को राखी बांध देती हैं,
1: जी
0: और
1: जी
0: फिर यहाँ पर भी ध्यान रखती हैं कि आपके पति
1: जी
0: को, उनकी भी तो बहनें
1: जी
0: हैं ना, वो लोग आए राखी
1: जी
0: बांधने के लिए।
1: जी फिल्म
0: तो बताइए रंजीता जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम है जीवन मृत्यु और गाने की बोल है, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।
0: तो रंजीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी? अपना नाम बताइए।
1: जी, आपकी बात इशिका वर्मा से हो रही है
0: कहाँ से बात कर रही हैं ईशिका आप?
1: जी? उज्जैन से। हाँ,
0: क्या बात है, ये बताइए, आपकी आवाज से ऐसा लग रहा है छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हैं आप।
1: यस मैम, मेरी एज ज्यादा नहीं है, 24 ही है। हाँ
0: अच्छा, क्या बात है,
1: जी
0: तो ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि जो युवा वर्ग है हमारे देश का, विविध भारती सुनती है
1: यस
0: ना?
1: मैम। मैम यहाँ पर सभी सुनते हैं, मतलब हमारे जो पापा मेरे फादर इन लोग, वो मतलब ऑलमोस्ट ही रेडियो में मतलब कॉल्स करना और हम सबको भी रेडियो सुनाना उन्हीं ने सिखाया है।
0: क्या बात है, तो आपने बोला फादर इन लॉ, तो आप विवाहित हैं?
1: यस मैम, इसी ईयर मेरी शादी हुई है। यस
0: इसी साल?
1: मैम, फैमिली
0: अच्छा, अरे वाह,
1: अच्छी है मैम, बिल्कुल।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: आपके इस नए विवाहित जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं ईशिका। और
1: थैंक
0: बताइए,
1: यू मैम।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैम आज मैं अंधा कानून का मेरी बहना दीवानी है सॉन्ग।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपके लिए, आपकी ही पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी। मैम नमस्ते। पहले तो आपको, हाँ
0: नमस्ते।
1: जी, मैं प्रमिला महेश बोल रही हूँ मैम, गुजरात के साबरमती से। जी
0: साबरमती से प्रमिला महेश
1: बिल्कुल
0: जी, तो बताइए प्रमिला जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम, आप सुनाइए। हाँ
0: जी यहाँ पर भी सब लोग अच्छे हैं और स्वस्थ हैं
1: जी,
0: जी। तो अपने बारे में कुछ बताइए।
1: यही है मैम, बस घर के ही काम करते हैं, घर में ही रहते हैं, और फ्री टाइम में तोरण वगैरह जो दरवाजों पे लगे होते हैं वो बनाते हैं मैम।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि गुजरात
1: हाँ
0: की ये
1: जी
0: कला बहुत प्रसिद्ध है और बड़ा बारीक
1: जी
0: काम है।
1: हाँ जी मैम जी मैम, ये घर के पास ही एक कारखाना है, तो वो गृह उद्योग है महिलाओं के लिए, तो वो अपने को घर पे लाने के लिए देते हैं वो ऐसा काम।
0: अच्छा, तो
1: हाँ
0: मतलब
1: जी
0: आप अपने समय का पूरा सदुपयोग करती हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, मतलब खाना ना खा के जब हम फ्री होते हैं 3 बजे, तो सखी सहेली जैसे ही चालू होता है हमारा काम भी चालू हो जाता है।
0: क्या बात है, तो सखी
1: जी
0: सहेली
1: जी
0: और
1: मैम
0: आपका तोरण बनाने का साथ, ये हमेशा
1: बिल्कुल
0: साथ है।
1: बिल्कुल, एक दिन भी मिस नहीं होता है आपका सखी सहेली है, हेलो फरमाई से। जी
0: प्रमिला जी, तो यही तो आप जैसे जो श्रोतागण हैं वही
1: हाँ
0: ये
1: जी
0: सुंदर हमारे सितारे हैं विविध भारती के, है ना? और ये बताइए, रक्षाबंधन आने वाला है
1: हाँ जी मैम,
0: तो क्या तैयारियां चल रही हैं उसकी?
1: तो तैयारी तो ये है मैम कि मायका तो दूर है, अभी हमारा इंदौर में है, तो देखेंगे, अभी जाना होगा तो जाएंगे, वैसे ऐसे कुछ सोचा नहीं है। दो भाई थे मेरे, दोनों ऑफ हो गए, एक बड़े भैया हैं अभी, वही है फैमिली में, भैया भाभी उनके बच्चे हैं, तो जाते हैं कभी
0: तो
1: ऐसे। एक
0: दोनों
1: दीदी मेरी पास में ही है इंदौर में, तो वो अटेंड कर लेती है प्रोग्राम को।
0: जी,
1: जब मेरे भैया दोनों गुजरे थे, हम दोनों की ही मट्टी में, मतलब मैं दूर होने की वजह से नहीं मिल पाई मैं उनसे,
0: जी
1: यही दुख
0: जी
1: लगता है ज्यादा। जी
0: जी कष्ट जीवन में आते हैं प्रमिला जी, फिर ईश्वर हमें उसका साथ,
1: हाँ
0: उसका
1: जी
0: सामना
1: मैम,
0: करने के लिए शक्ति भी देते हैं, है ना
1: शक्ति मिलती है मैम, अभी
0: जी?
1: थोड़ा क्या करें, हिम्मत तो रखनी पड़ती है ना, अब ऐसा हो गया है तो।
0: हाँ,
1: एक
0: हम
1: भैया है उनसे भी हम
0: जी,
1: अच्छे
0: हम
1: रहते हैं, खुश रहते
0: जी
1: हैं, माँ बाप का प्यार उनसे ही मिल जाता है मैम हमको।
0: बिल्कुल, आपकी आवाज सुन के हम भी भाव विभोर यहाँ हो रहे हैं, आपके दुख को और आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। लेकिन जो बड़े भाई हैं वो ही
1: जी जी
0: अब आपका ध्यान भी रखते होंगे, आपसे बात भी करते
1: मैम
0: होंगे,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल,
0: ना
1: ध्यान रखते हैं,
0: जी?
1: बुलाते हैं हमेशा, कॉल करते हैं, फिर त्योहार पे कोई प्रोग्राम होता है या घर में कोई फंक्शन होता है तो फोन करके, बकायदा हमको न्योता मिलता है आने
0: ये बात तो
1: का
0: है।
1: और जाना
0: दो
1: भी पड़ता है मैम
0: और
1: फिर।
0: आजकल तो क्या डिजिटल वर्ल्ड भी हो गया, तो वीडियो कॉल से भी
1: हाँ जी
0: बात कर सकते हैं, वहां से एक छोटी सी ही सही लेकिन मुलाकात तो हो जाती
1: जी
0: है ना?
1: मैम, मिलती है तो नहीं, जैसे कभी जाना होता है तो 10 दिन 15 दिन तो मेरा तो फिक्स है, मतलब दूर से जाती हूँ तो मतलब वो फिर मुझे आने भी नहीं देते हैं,
0: सही
1: ऐसा है।
0: बात
1: हाँ
0: है जी, हाँ,
1: जी
0: क्योंकि बार बार वहां जाना संभव नहीं
1: हाँ
0: हो
1: जी
0: पाता
1: हाँ
0: जी। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रमिला जी। आज बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आप?
1: जी मैम, मेरे को काजल मूवी का सुनना है, देखो छम छम घुंघरू बोले।
0: जी, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का यही गीत।
2: छम छम घूम।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं मीना मारू बोल रही हूँ इंदौर से। जी
0: इंदौर से मीना मारू जी, क्या बात है?
1: मैं
0: तो कैसी हैं आप और अपने बारे में कुछ बताइए।
1: बहुत अच्छी हूँ। मैं एक शॉप है मेरी पिपली बाजार में,
0: जी
1: लेडीज वेयर की शॉप संभालती हूँ,
0: क्या बात है। तो
1: और मैंने अपने शॉप पे भी रेडियो रख रखा है, विविध भारती के सारे प्रोग्राम सुनती
0: ये
1: हूँ।
0: तो बहुत ही बढ़िया बात है, यानी कि काम भी करते हैं और आप अपना मनोरंजन भी करती हैं। और
1: हाँ जी
0: सिर्फ मनोरंजन नहीं है, विविध भारती पे तो सारी देश विदेश की जानकारियां मिलती हैं हमें, है ना?
1: हाँ जी जी
0: तो घर परिवार में कौन कौन है बताइए।
1: घर परिवार में मेरी एक बेटी है नयन,
0: जी
1: और एक बेटा है प्रियम मारू, हस्बैंड है, बेटी की शादी हो चुकी है,
0: क्या बात
1: उसकी
0: है।
1: बेटी है, हाँ जी उसकी बेटी है अनिष्का, 8 साल की।
0: आज हम बात कर रहे हैं मीना जी, अब रक्षाबंधन, तो आपकी
1: बिल्कुल,
0: क्या यादें हैं रक्षाबंधन को लेके, आप इसके बारे में कुछ बताइए।
1: रक्षाबंधन की यादें मेरी तो बहुत अच्छी यादें रही हैं। मेरे दो भाई हैं, मतलब एक भाई 4 साल पहले शांत हो चुका है, वो बड़ा दुखदायी याद है मेरे लिए। और रक्षाबंधन का त्योहार मेरे लिए बहुत बड़ा त्योहार हुआ करता था।
0: जी
1: मैं अपने बच्चों के साथ में मायके जाती थी, पूरा परिवार साथ में हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते थे,
0: जी
1: और मुझे मिठाइयों का भी बहुत शौक है, तो मैं रक्षाबंधन पे हमेशा घर से ही मिठाई बना के ले जाती थी।
0: क्या बात है। तो आप सारी मिठाइयाँ आप
1: हाँ जी
0: बनाती हैं?
1: हाँ जी हाँ जी, मैं घेवर, स्पेशली मेरे घेवर बहुत फेमस है मेरे मायके में, सबको
0: अरे वाह।
1: मेरे हाथ के घेवर बहुत पसंद आते हैं। करीब 30-35 साल से बनाती आ रही हूँ मैं। तो
0: जी
1: हमारा त्योहार राखी का त्योहार तो बहुत अच्छे से मनता था, पर बस कुछ 4-1 साल से मेरा बड़ा ब्रदर मनोज जांगी करके था, उसकी सडनली डेथ हो चुकी है, तो वो त्योहार
0: ओहो
1: अभी आज के

0: ये मेरे लिए बहुत दुखदाई रहता है। असल में अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा गला रुंध गया है,
1: जी वो महसूस
0: मुझे
1: कर
0: अपने
1: पा
0: भाई की
1: रहे हैं
0: बहुत
1: हम
0: याद आती है। हाँ
1: जी।
0: जी,
1: लेकिन मीना जी यही है,
0: वैसे
1: जो हमारे प्रिय हैं वो अगर हमसे दूर चले भी जाते हैं ना, तो उनका
0: हाँ
1: प्यार
0: जी,
1: एक शक्ति बन के हमारे साथ रहता
0: बिल्कुल
1: है ना।
0: बिल्कुल,
1: तो
0: आप
1: अच्छी
0: बात सही
1: यादों
0: कर,
1: को
0: बिल्कुल
1: आप
0: सही।
1: संजो के रखिए, उनके साथ बिताए, जो हंसी मजाक वाले जो अच्छे पल हैं उनको अपने मन में बसाए रखिए, क्योंकि राखी वाले दिन किसी न किसी तरीके से वो भाई आप तक अपना प्रेम तो पहुंचा
0: बिल्कुल
1: ही देंगे,
0: हाँ,
1: है ना।
0: होता है बिल्कुल
1: जी जी बिल्कुल।
0: बिल्कुल।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं।
0: बेईमान फिल्म का गाना है, लता जी और मुकेश की आवाज में। गाने के बोल है, ये राखी बंधन है ऐसा, ये राखी बंधन है ऐसा, जैसे
1: आहा
0: चंदा और किरण का, जैसे बदली और पवन का, जैसे धरती और गगन का, ये राखी बंधन है ऐसा। ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है।
1: बिल्कुल, जिस तरह से सुरीले तरीके से आपने ये गाने को सुनाया है, तो चलिए सुनते हैं उसी गीत को।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली,
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं निगाह जान बोल रही, इंडिया जम्मू कश्मीर से। जी
0: क्या बात है, कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कॉल आई है निगहत जान की।
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: तो कैसी हैं आप और कैसा है कश्मीर?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कश्मीर भी बहुत अच्छा है और यहाँ भी थोड़ा सा गर्मी तेजी हो रही है। अभी गर्मी चल रही है क्योंकि सितंबर जो महीना है वो, उसमें भी गर्मी होगी थोड़ी। फिर अक्टूबर से यहाँ सर्दी का मौसम शुरू होने वाला होता है।
0: जी, और उसके बाद तो फिर
1: जी
0: सुंदर बर्फ से ढके पहाड़ हो जाते हैं, है ना?
1: तो हाँ, वो तो ज्यादातर यहाँ बर्फ जो गिरती है वो दिसंबर में महीने में गिरती है।
0: जी
1: खास
0: जी
1: करके मैं श्रीनगर में रहती हूँ,
0: जी
1: टूरिस्टों का तो आना यहाँ बहुत रश होता है क्योंकि यार डल लेक है वहाँ।

0: बे बे ना शिकारी का सवारी करने, और
1: जी
0: टूरिस्ट यहाँ बहुत आते हैं।
1: जी कुछ बीच में बच्चों की छुट्टियां भी लग जाती है ना, तब भी
0: हाँ
1: कश्मीर सबसे पहले सभी, मुझे लगता है अधिकतर लोगों की लिस्ट में यही रहता होगा कि कश्मीर घूमने तो जरूर जाएंगे, है ना
0: हाँ क्योंकि कश्मीर का दूसरा नाम है जन्नत।
1: जी। बिल्कुल, और आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस जन्नत में रहती हैं, है ना
0: बिल्कुल
1: जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी अपने बारे में कुछ बताइए निखत जान
0: जी,
1: आप।
0: मैं घर में होती हूँ, मैं घर संभालती हूँ। अब तो मेरे शादी है, 12 दिन रह गए मेरी शादी को,
1: कब?
0: 1 सितंबर और 2 सितंबर को मेरी शादी है।
1: अरे वाह, आपका ब्याह होने वाला है तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं
0: मेरी बहन भी इसके नाम में को सुनना चाहती है, उसका नाम है कुमसर जान।
1: जी, उन्हें भी हमारा नमस्कार कहिए।
0: हाँ चलते चलते मैंने सोचा अब मुझे किसी और के घर जाना है, तो सोचा सहलो सहल में एक बार फिर से कॉल करूं। तो खुशकिस्मती है मेरी कि मेरा कॉल लग गया आज, और मैं बहुत खुश हूँ। जब भी मैं कोशिश करती हूँ तो मेरा कॉल लग ही
1: तो
0: जाता।
1: ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, और एक बार फिर आपको आपकी शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयां। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: फिल्म का नाम है सावन। गाने के बोला है, तुझे याद किया मेरे दिल ने, कब आओगे साजन मुझसे मिलने।
1: वो
0: अब
1: तो
0: तो
1: बस
0: साजन का ही
1: आ ही रहे
0: इंतजार
1: हैं, सितंबर में बस आने ही वाले हैं, है ना। तो
0: हाँ
1: अब ये
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इंतजार का जो वक्त है
0: खत्म हो गया
1: बिल्कुल खत्म होने को ही है, तो चलिए सुनते
0: बिल्कुल।
1: हैं इस गीत को।

0: कार्यक्रम हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। हम सहेलियों से अनुरोध करते हैं कि जिनके कॉल्स आज लग पाए हैं वे अगले 2 महीनों के बाद हमें संपर्क कीजिए ताकि बाकी सखियों को भी बातचीत का अवसर मिल सके। जिनके कॉल्स नहीं लग पाए हैं वे सहेलियां निराश न हो, आप अगले मंगलवार अवश्य कोशिश कीजिएगा। सखियों, आपसे अब मुलाकात होगी हेलो सहेली के अगले अंक में। साथ ही सभी सुनने वालों को ये बता दें कि हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार के दिन सुबह 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर हैं हिंदी में 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, अंग्रेजी में नंबर है 400-24662, एक और नंबर है 28670288, मुंबई का एसटीडी कोड 022। आज की हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं किरण बंग और संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का। विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त दीपा माहेश्वरी लेती हूँ इजाजत। आप सभी को हेल्दी नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: दोस्तों नमस्कार, गीतों भरी कहानी में आज प्रस्तुत है उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का।
2: चाचा आपको बुला रहे हैं। क्यों? कहते हैं भले ही दो दिन के लिए आ जाओ पर आपका आना जरूरी है। अचानक? अचानक कैसे आऊं? घर की व्यवस्था जमानी होगी, रिजर्वेशन करवाना होगा, फ्लाइट के टिकट बहुत महंगी मिलेगी। अच्छा मेरी बात जरा चाचा से करवा दो। वो बात कर पाते तब ना। ओह, मीनाक्षी सोच में पड़ गई। चाचा ने बुलाया है तो जरूर कोई बात होगी, पर ऐसी क्या बात है जिसके लिए चाचा अचानक बुला रहे हैं? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो चाचा सिर्फ उसी को बताना चाह रहे हों, क्योंकि बचपन से ही वो चाचा के बहुत करीब रही है। सब भाई बहनों के बीच चाचा उसी को सबसे ज्यादा स्नेह करते थे। वो भी चाचा को अपने पिता से ज्यादा मान सम्मान और प्यार देती थी, उन्हीं से सलाह लेती थी। कोई और बात यानी उनके स्वास्थ्य से संबंधित तो नहीं? क्योंकि पिछले वर्ष से वो लगातार बीमार चल रहे थे। बीमारी की वजह से उनका बाहर निकलना बंद हो गया था। बस अपने रूम में लेटे लेटे वे रेडियो सुनते रहते थे। चाची वहीं उनका खाना पानी और बाकी चीजें मसलन पेपर पत्रिकाएं रख देती थी। चाची ने बताया कि आजकल चाचा को अजीब से दृश्य दिखाई देते हैं। उनकी हालत देखकर चिंता हो रही है। तुम आ ही जाओ, उनको बहुत कष्ट है। उसने रिजर्वेशन के लिए या तत्काल में टिकट बनवाने के लिए एजेंट को बोला पर कोई सीट खाली न थी। कोई ड्राइवर मिल जाए तो मैं अपनी गाड़ी से आने की कोशिश करती हूँ, मीनाक्षी ने मैसेज किया। फ्लाइट से आ जाओ, चाची का मैसेज था। डायरेक्ट फ्लाइट भी तो नहीं है। सुबह 3 बजे ही मीनाक्षी की नींद खुल गई। रास्ते के लिए खाने पीने का सामान रख कर वो तैयार हो गई। उसने अनुमान लगाया कि यदि सब ठीक ठाक रहा तो रात तक पहुंच ही जाऊंगी। चाची का मैसेज था टैक्सी से ही आ जाओ। नहीं नहीं, मैं गाड़ी से आ रही हूँ। गाड़ी और ड्राइवर पहचान वालों की है, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, मीनाक्षी ने चाची को तसल्ली दी। चाची की घबराहट से वो भी चिंतित।

गाड़ी में बैठते ही मीनाक्षी सोचने लगी, हे ईश्वर सब ठीक रखना। सड़क के दोनों ओर काफी भीड़ थी। फल सब्जी बेचने वालों के ठेले लाइन से लगे थे। कुछ बूढ़ी महिलाएं सड़क के किनारे डलिया में अमरूद लेकर बैठी थीं। अमरूद का ये सीजन मीनाक्षी को यूं भी पसंद था, क्योंकि हरे पीले और अंदर से हल्के से लाल गुलाबी अमरूदों को देखकर उसकी तबीयत खुश हो जाया करती थी। उसे याद आया गांव के पास ही अमरूद का बगीचा था। चाचा उन अमरूद को ठेके पर उठा देते थे और एक दो पेड़ परिवार और रिश्तेदारों के लिए बचा लेते थे। अमरूद के पेड़ों पर हजारों तोतों का ठिकाना रहता था। वे जितने अमरूद खाते थे उससे ज्यादा अधखाए अमरूद नीचे गिरा देते थे। उसे याद है एक बार रखवाली करने वाले लड़के ने गुलेल से एक तोते को घायल कर दिया था। तब चाचा ने नाराज और दुखी होकर उसको काम से ही निकाल दिया था। तोते को घर में लाकर उसका इलाज करवाया गया था और चाचा ने उसे अपने पास रख लिया था। चाचा उसे प्यार से बेटू बोलते थे। बेटू भी कितना बोलता था, लड़ता था, प्यार जताता था। बाद में वो बगीचा चाचा ने बेच दिया था, क्योंकि वे उतना समय नहीं दे पाते थे, पर जिसको बेचा था वो भी अमरूद की पेटियां भिजवाता रहता था। चाचा के दो ही शौक थे, जमीन खरीदना, वो भी बंजर जमीन, शहर से दूर, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए सैकड़ों उपाय निकालना। उनके सुबह के 4 घंटे इन्हीं कामों में निकलते थे। फिर बाद में उसने सुना कि चाचा ने अपने खेतों में 500 सीताफल के पेड़ लगवाए थे, पर वे नहीं लगे क्योंकि जमीन उनके अनुरूप नहीं थी। चाचा ने जहां से पेड़ मंगवाए थे वे स्वयं वहां गए। वहां से पूरे 8 विशेषज्ञों को लेकर आए थे और उनकी जिद कि दोबारा फिर से वही पेड़ लगवाएं। परिवार वाले परेशान, कितना पैसा बर्बाद करते हैं, बेचो जमीन और खेत, आराम से रहो, पर नहीं। चाचा का मन तो वही रमता। बीमारी के 1 माह बाद जब वे उन खेतों पर गए तो देखा वहां तो मजदूरों ने पूरी गृहस्थी बसा रखी है और कुत्तों का परिवार बाकायदा पला हुआ है। चाचा, चाचा, मीनाक्षी के कंठ से प्रार्थना के स्वर निकले, हे प्रभु, हे प्रभु, चाचा को स्वस्थ रखना।

कहाँ तक पहुँची? कोई दिक्कत तो नहीं है? चाची और बहन के कई मैसेज पड़े थे। अरे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आराम से आ रही हूँ, उसने मैसेज लिखा। शहर से बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेना मीनाक्षी को अच्छा लग रहा था। हरे भरे खेतों के बीच नए बनते मकानों को देखकर उसे कुछ नहीं अच्छा लगा। हाँ, पेड़ों की नई नई कतार को देखकर उसका मन अलबत्ता खुश हो उठा। वाह, मौसम तो अच्छा है जी, ड्राइवर ने रेडियो की आवाज कम की। क्या तुम अक्सर ही बाहर जाते हो? जी मैडम, जब जैसी राइड मिल जाए चला जाता हूँ, ड्राइवर बोला। तुम्हें क्या फर्क

लगता है। बस मैडम, जहाँ रोड ठीक है वहाँ तो आराम से गाड़ी चली जाती है, लेकिन जहाँ रोड कट गए हैं या नया निर्माण हो रहा है वहाँ तो बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हो? यही गांव में रहता हूँ। एक दो गाय भैंसे हैं, एक एकड़ का खेत है, उसमें कुछ न कुछ उगाते रहते हैं। घर का अनाज और सब्जियां हो जाती हैं, बाहर तो काम कभी कभार ही मिलता है। माता पिता को भी चिंता

0: तक बादलों ने सूरज को ढांक लिया था। धूप की जगह धूसर रंग चारों तरफ दिखाई दे रहा था। सड़कों के दोनों तरफ हरे भरे खेत थे। वाह, कितना सुंदर मौसम हो गया है, मीनाक्षी ने फिर दोहराया, जैसे उसकी यात्रा का सहयात्री ये मौसम ही हो। मैडम, हम लोग तो आज भी कोशिश करते हैं कि शुद्ध हवा में रहें, शुद्ध पानी पिएं। हमारे बोर में इतना पानी आता है कि आसपास के लोग तक पानी लेने आते हैं। मेरी माँ भी मौसम की बहुत बात करती हैं। उन्हें अपने गांव का मौसम अक्सर याद आता है, आप ही की तरह, ड्राइवर बोला। अच्छा, आप यकीन करेंगे मैडम, हमारे खेत के कुएं का पानी हरे रंग का है। अच्छा, कैसे? अरे मैडम, उसके आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हैं ना, उनकी पत्तियां उसमें गिरती रहती हैं, तो उसका स्वाद भी अलग है, एकदम शुद्ध हर्बल वाटर की तरह। वाह भाई, तुम्हारी बातें तो बड़ी दिलचस्प हैं। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। इन 2-3 महीनों में बिना मौसम की बरसात बड़ी नुकसानदायक होती है। देखिए ना, फसल पकने को है, अगर ज्यादा पानी गिर गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी। वो सोच में पड़ गई, जीवन भी तो किसी फसल की तरह ही होता है, और चाचा तो जीवन में फसलों को ही जीते रहे हैं। चाचा पढ़े लिखे हैं, बाकायदा PhD, कुछ साल नौकरी की, पर नौकरी करते हुए वे ज्यादातर वक्त अपने खेतों पर गुजारते थे। चाचा के साथ शादी से पहले वो भी उनके खेतों पर और गांव जाया करती थी। हाँ, जब उन्होंने शहर में जमीन लेकर फार्म हाउस बनाया था, तब चाचा ज्यादातर काम फोन पर ही करवा लिया करते थे। उनके खेत पर होने वाली पार्टी का सबको इंतजार रहता था। चारों तरफ लगे आम के वृक्ष, खेतों में लगी सब्जियां, बीच में बना छोटा सा सरोवर और कतार में लगे बेरों के पेड़ चाचा आने वाले दोस्तों को उपहार में क्या दिया करते थे। 5 किलो मटर, 2 किलो बेर और 1 थैला अमरूद, यानी हर एक के लिए 3-3 थैलियां गिनकर रख दी जाती थी। चाचा के दोस्त हंसते, यार ये बढ़िया है, नींबू पानी पिलाओ, घर की सब्जियां खिलाओ, खेतों में घुमाओ, और गिफ्ट भी अनोखी, वो भी ऑर्गेनिक, क्या बात है। मीनाक्षी के होठों पर मुस्कुराहट थी, पर आंखों में आंसू छलक आए। उसने साइड में गाड़ी रोकने को कहा, पानी पिया, फिर थर्मस में से चाय निकाली। बारिश तेज होने के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ा रुक जाते हैं, बिजली गिरने का अंदेशा भी तो रहता है, मीनाक्षी ने ड्राइवर से कहा। जी मैडम, बारिश भी अच्छी लग रही है ना, ड्राइवर बोला। मीनाक्षी को लग रहा था कब वो चाचा के पास पहुंचे। ये रास्ते इतने लंबे क्यों लग रहे हैं, समय इतना भारी और ठहरा हुआ क्यों लग रहा है, ढेर सारी बातें उसके जहन में आ जा रही थीं। बचपन जो किसी बेहद खूबसूरत परिंदों के देश जैसा लगता था, जिसमें सैकड़ों परिंदे होते थे, जानवर होते थे, रंग बिरंगे फूल खिले होते थे, छोटे छोटे कुएं, बावड़ी और नहरें होती थीं। आज भी वो किसी को बताती है तो सबको लगता है कि वो किताबी कहानियां सुना रही है, पर वो उसका असली बचपन था। बाद के वर्षों में पेड़ कम होते गए, फसलें बिगड़ती गईं, बगीचों के पेड़ उजड़ते गए, और उसके आसपास मंडराने वाली तितलियां भी स्वप्न की तरह होती गईं।
1: बच्चे

चले मैडम, ड्राइवर ने कहा तो उसका ध्यान भंग हुआ। बारिश तो मिलेगी पर रोड अच्छा है, आराम से चलते हैं, जहाँ तेज बारिश होगी वहाँ रुक जाएंगे। मीनाक्षी ने किसी को कुछ नहीं बताया, बेकार सबको चिंता हो जाएगी। स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की पढ़ाई के बाद नौकरी, शादी, जिम्मेदारियां, सबने मिलकर बीच के अंतराल को जैसे खामोशियों से भरे बादल में छुपा दिया था। जीवन भी चुपचाप अपनी दिशा तय कर लेता है और हमें लगता है कि हम उसे चला रहे हैं। भीतर की आवाजें लगातार हमें पुकारती रहती हैं और मन बाहर की आवाजों को सुनते हुए भागता रहता था। हम जन्मदिन बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं, पर नहीं जानते कि एक वर्ष और चुपके से निकल गया, गिनती में एक साल और कम हो गया। चाचा, चाचा का जीवन कितना गतिशील, कितना खूबसूरत रहा है। आधी उम्र आसमान में उड़ते हुए निकल गई और आधी धरती पर काम करते हुए। मैडम, आप चाहें तो आराम कर लें, मैं सीट डाउन कर देता हूं, ड्राइवर बोला। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं। ये आसपास की हरियाली देखने का सुख जो मिल रहा है, क्या करूं, पेड़ों और पक्षियों में जान बसती है मेरी। बचपन जिस माहौल में बीतता है वही आपके स्वभाव में रच बस जाता है। हाँ ये तो है मैडम। अब कहने को हमारे पास दो कमरे हैं, पर बाहर का एरिया इतना खुला हुआ है कि शहर में कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती। कितनी देर में पहुंच रही हो तुम? बहन का फोन आया था। बस अभी 2 घंटे और लगेंगे, ट्रैफिक अगर न मिले तो, मीनाक्षी बोली। रात का खाना बनवा कर रखे हैं, कुछ खास बनवाएं क्या, बहन ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, बस जल्दी ही पहुंच जाए, बस जल्दी ही पहुंच जाए, उसने मन ही मन कहा। शाम की छाया पहले आसमान में, फिर पेड़ों पर, फिर धरती पर उतरती हुई अंधकार का रूप धारण कर चुकी थी। दूर कहीं एकाध लाइट दिख जाती। घना जंगल है और रोड भी सुनसान, एकाध गाड़ी आती जाती दिख जाती थी। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना भैया? जी मैडम, मेरा देखा हुआ रास्ता है, आप चिंता न करें, थोड़ी दूरी पर ही तो एक चाय का ढाबा है। मीनाक्षी के मन में बुरे ख्याल आने लगे, यहाँ तक कि ड्राइवर भी अजनबी लगने लगा। पर नहीं, सब ठीक रहेगा, पेट्रोल है, स्टेपनी सही है, कोई दुर्घटना होगी ही क्यों। हाँ, फिल्मी तर्ज पर 4-6 लुटेरे आ जाएं, गाड़ी घेर लें, वो बात अलग है, जंगली जानवर तो बेचारे गाड़ियों की लाइट से ही डर जाते हैं। मीनाक्षी ने देखा दूर बिजलियां टिमटिमाती नजर आ रही थी। चाय पियोगे? जी मैडम, आप? हम भी पी लेंगे। मीनाक्षी को लगा वो लंबी अंधेरी सुरंग से बाहर निकल आई है। गांव में आधी रात को ऐसा ही अंधकार पसर जाता था, पर उस रात का मायावी रूप जैसे और निखरने लगता था। आसमान में चमकते नक्षत्रों को देखकर, चांद और उसके आसपास के नक्षत्रों को गिनते हुए मन का सारा भय दूर हो जाता था।

0: सुना दे।
1: घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। बाहर कुछ लोग वॉक कर रहे थे। कुत्तों का पूरा समूह पेड़ों के आसपास सो रहा था। गाड़ी की आवाज सुनकर एक दो कुत्तों ने ऊंघते हुए देखा, थोड़ा सा गुर्राए, फिर अपनी जगह पर जाकर हाथ पांव पसार कर सो गए। ड्राइवर के लिए ऊपर का रूम खुलवा दिया है। चाची ने उससे गले मिलते हुए कहा, थक गई होगी ना, हाथ मुंह धो लो, खाना लगा दिया है। बाकी लोग? मीनाक्षी बोली, तुम्हारे लिए कुछ मीठा लेने गए हैं। चाचा सो गए क्या? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़कर चाचा के कमरे में गई, क्षणों तक ठिठकी। रेडियो बज रहा था, टेबल लैंप जल रही थी, साइड की रैक में किताबें रखी थी। चाचा की दवाइयां और अन्य सामान भी अलग अलग बक्सों में रखा था। चाचा, चाचा, मीनाक्षी ने धीमे से पुकारा। अरे बेटा मीनाक्षी, आ गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटा, आओ आओ। चाचा से गले मिलकर उसके आंसू निकल आए। देर तक वे उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे। चाचा, आप ठीक है ना? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ ठीक हूँ, अभी खाना खाकर सो जाओ, सुबह बात करते हैं। चाचा का चेहरा एकदम दुबला हो गया था।

मीनाक्षी का मन अब बेचैन हो उठा। चाचा ने एकाएक क्यों बुलाया है आखिर, अब जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा, आपने फोन करवाया था ना, कोई खास बात है क्या? चाचा क्षणों तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, तुम अब भी वैसी ही हो जैसी बचपन में थी। हाँ चाचा, मन तो वैसा ही है। बेटा, तुम्हें पता है ना, अपना अमरूद का जो बगीचा है वो हमसे छिन गया था। वो केस हम जीत गए हैं। 13 साल लग गए उस केस में। सचमुच? पर आपने तो कहा था कि बेच दिया है। मीनाक्षी बोली, इसीलिए कि हम सबको विवादों में नहीं डालना चाहते थे। तो अब वहाँ 4-5 आदमी रख दिए हैं, वे उसकी देखभाल कर रहे हैं। लेकिन लेकिन क्या चाचा? बगीचे से जुड़ी जो जमीन थी, हमने उसे भी खरीद ली है। क्यों, क्या करेंगे उस जमीन का चाचा? वहाँ केवल पेड़ लगवा रहे हैं, कुछ फलदार और कुछ दूसरी तरह के। ये तो बहुत अच्छी बात है चाचा, गांव भी पास में पड़ता है। देखो बेटा, तुमने अपना जीवन गांव में बिताया है, तुम तो गांव की हवा जानती हो, उसका मूल्य भी समझती हो, और मेरा वहां से बड़ा लगाव है। बस ये सोच लो कि मेरी आत्मा वहीं पर रहती है बेटा। जी चाचा, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ। हाँ, यहाँ के खेतों में जो पेड़ लगवाए थे वो तो नहीं लग पा रहे हैं। देखेंगे, बाद में कुछ और लगवा देंगे। यहाँ उस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, वैसे इतना फैलावा करके रखा है कि मालूम है कि बच्चों की इन सारी चीजों में कोई रुचि नहीं है। फिर भी, चाची ने चाचा की शिकायत करते हुए कहा, चिराग की तो कोई रुचि है नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव और प्रकृति होती है, हो सकता है कल के दिन उसका मन बदल जाए। फिलहाल मैं गांव वाले मुद्दे पर आता हूँ। अगर मैंने बगीचा, वहां की जमीन दूसरों के हाथों में सौंप दी या बेच दी, तो वे सब बर्बाद कर देंगे। बेटा, मैं चाहता हूँ कि वहां खूबसूरत जंगल जैसा परिवेश हो, बेशक कुछ कॉटेज रहने के लिए बनवाए जा सकते हैं। जी चाचा, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। कैसी जिम्मेदारी? मैं निभा पाऊंगी क्या? मैंने बगीचा, उससे लगी जमीन, गांव का मकान और वहां का खेत तुम्हारे नाम कर दिया है, सबकी सहमति से। चिराग कुछ नहीं करेगा, यहाँ की जमीन उसके नाम है, चाची के साथ। बस शर्त यह है कि तुम बगीचे को बगीचा और पेड़ों को कभी भी बेचोगी और काटोगी नहीं। बेटा, मैं जानता हूँ तुम ही ये चीजें बचा सकती हो, मेरे विरासत को, बच्चों की तरह पाले पोसे वृक्षों को और वहां पलने वाले पशु पक्षियों को। याद है बचपन में उस तोते को तुम ही अस्पताल ले जाती थी बेटा, तुम्हारे ही कारण वो बच पाया था, और कितने सालों तक हमारे साथ रहा, याद है ना मीनाक्षी बेटा? मीनाक्षी एकटक चाचा का चेहरा देखे जा रही थी, माथे के आसपास की उभरी हुई नसें, अंदर को धसी आंखें, हाथ और पांव पर फैली उभरी नसों का जाल। तो क्या चाचा को अपना जीवन अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है?

चाचा, आप अच्छे खासे स्वस्थ हैं, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका काम देख लिया करूंगी, पर प्लीज वसीयत असीयत का ख्याल छोड़ दीजिए चाचा, मुझे नाम से कोई मतलब नहीं है। मीनाक्षी ने चाचा का हाथ थाम कर कहा, चाचा आपकी सेवा करना मेरा धर्म है और मुझे सुख भी मिलेगा। वो भावुक होठी, मैं इस जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूं बेटा। अपनी विरासत किसी गुणी को, समझदार को और उसके प्रति लगाव रखने वाले को सौंपूंगा तो वो सुरक्षित रहेगी। मुझे मालूम है तुम्हें ये सारे काम आते हैं, तुम वहां की मिट्टी में पली बढ़ी हो, लोगों को जानती हो। मुझे विश्वास है कि तुम वहां की सारी चीजों को संभाल लोगी बेटा। सुनीता, सुनीता जरा मेरी अलमारी में से वो फाइलें ले आना, चाचा ने चाची से कहा। मीनाक्षी चाची को लेकर अचरज में डूबी थी। क्या चाची को कोई एतराज नहीं है? महिलाएं तो अपनी एक चीज तक नहीं देती और चाची एक शब्द नहीं बोल रही हैं। फिर उसे लगा कि चाची बोलेंगी भी कैसे। चाचा ने परिवार का माहौल ही ऐसा बनाकर रखा कि अपने पराये में कोई भेद नहीं। अपने बड़े भाई के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उन्होंने ही संभाली थी। भाभी को हमेशा सम्मान दिया, दूसरे भाई को भी उनका हिस्सा और मकान दे दिया है। सारा परिवार हर त्योहार पर एक साथ मिलता जुलता है बेटा।

मीनाक्षी, मैं तुम्हें एक एक बात समझा दूंगा, चाचा उसे आश्वस्त कर रहे थे। चाचा आप थक गए हैं, आराम कर लीजिए, चलिए लेट जाइए, आराम करिए। मीनाक्षी अपने आप को असहज महसूस करने लगी थी। डायलिसिस के लिए जाना है, याद है ना, चाची ने टोकते हुए कहा। देखो मीनाक्षी बेटा, तुम्हारी चाची तो मेरी बात पर नाराज होने लगती है, पर तुम मजबूत दिल की लड़की हो, मेरी एकमात्र आखिरी इच्छा जरूर पूरी कर देना बेटा। हाँ बताइए ना चाचा, बोलिए। मेरा अंतिम संस्कार गांव में ही करवाना। चाचा आप बेकार की बातें करते हैं, तभी तो चाची नाराज होती हैं। क्यों ऐसी बातें करते हैं आप? सत्य को स्वीकारना चाहिए बेटा, जीवन मृत्यु ये तो शाश्वत है।

0: कभी तो हंसाए कभी के रुलाए।
1: अच्छा चलो चलो नाश्ता कर लो, चाचा ने मीनाक्षी से कहा। मीनाक्षी ने पीछे मुड़कर अपने आंसू पोंछे और बैग उठाकर बाहर आ गई। कहाँ जा रही हो तुम मीनाक्षी? आपके साथ हॉस्पिटल, फिर निकलना भी तो है मुझे। अरे इतनी जल्दी, तुम तो एक हफ्ते के लिए आई हो। हाँ अपना बगीचा और नया बन रहा जंगल देखने भी तो जाना है, आपको रिपोर्ट जो सौंपनी है और उन सबसे मिलना भी तो पड़ेगा ताकि आपका संदेश पहुंचा सकूं। चाचा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी ये सब, आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है कि आपने मुझ पर जो भरोसा किया है चाचा। अरे क्यों नहीं कर पाओगे तुम ही कर पाओगी, कोई अनजान जगह तो है नहीं, वो तो तुम्हारा तितलियों का देश है, उस देश की तुम रानी हो। जाओ मुलाकात करो अपने नए मित्रों से, मोरों से।

खरगोशों से, तोतों से और सुंदर चिड़ियों से। मीनाक्षी ने देखा चाचा के चेहरे पर एक गहरे संतोष की चमक दिखाई दे रही थी।

गीतों भरी कहानी। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष की लिखी कहानी तितलियों के देश में। वाचक स्वर ममता सिंह का था, संपादन सहयोग सौरभ घारू का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राघवेंद्र सिंह नेकी।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤ੍ਰਿੰਜਣ। ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਨਮੀਤ ਕੌਰ। ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼।
1: ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ FM ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤਿਓ, 22 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸਾਨਵਾਣੀ ਅੰਤਰਗਤ ਡੇਅਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਖੁਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਅਤੇ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਬਲਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ।
2: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं। गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।

0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
3: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
0: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नू हकीकत बनाउन लई चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
1: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नू बनाओ होर भी आसान।
0: तां अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
2: टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233।
4: जी, प्रोग्राम श्रोता मंच 77-173-76 है जी साडा व्हाट्सएप नंबर, और 0164-244-331 यह है साडा टेलीफोन का नंबर। इस नंबर से तुसी कॉल करके तुसी प्रोग्राम श्रोता मंच दे विच शिरकत कर सकते हो।
5: जी बड़ी मेहरबानी जी, ते साथियों एक कॉलर जड़े है वो आ भी गए है साडे नाल, असी इन्हां दे नाल गल करदे हां।

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल। तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: हर वड्डा बिजनेस एक वड्डी सोच तो शुरू हुंदा है, पर उस सोच नो हकीकत बनाने ले चाहिदा हुंदा है सही फाइनेंशियल सपोर्ट।
2: हुन तुसी भी मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन दे नाल पाओ अप टू 85% LTV ते 5 करोड़ रुपए तक दा गोल्ड लोन, ते अपने बिजनेस एक्सपेंशन नु बनाओ होर भी आसान।
1: तो अज ही विजिट करो अपनी नजदीकी मन्नापुरम ब्रांच, मन्नापुरम IGL गोल्ड लोन, तुहाडी ग्रोथ साडा विश्वास।
3: टोल फ्री नंबर 1800-420-2233।
4: जी
5: प्रोग्राम श्रोता मंच और 77-173-73-146 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।

ये फैसला देते हैं। बेंच ने कहा है कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 दरमियान नोटिफाई न्यायिक सेवा परीक्षावां च शामिल होने वाले उम्मीदवार पहलां दे तजर्बे नूं विचारे बिना योग होणगे। हालांकि इन्हां परीक्षावां राहीं चुने गए उम्मीदवारां नूं शुरू च सिखलाई प्राप्त न्यायिक अधिकारियां वजों नियुक्त किया जाएगा अते उन्हां नूं एक न्यायिक अकादमी च एक साल की सिखलाई उस तों बाद एक होर साल की ढांचागत सिखलाई विचों गुजरना होगा। पिछले साल 20 मई नूं सिखरली अदालत ने नवे कानून ग्रैजुएटा नूं एंट्री लैवल न्यायिक सेवावां परीक्षा च शामिल होने तो रोक दिता सी। घट्टो घट 3 साल की कानून अभ्यास मापदंड निर्धारित किया गया सी। पंजाब सरकार की नशियां खिलाफ मुहिम युद्ध नशियां विरुद्ध तहत सूबे भर के स्कूलों में विद्यार्थियों नशियां के मारू प्रभावों बारे जागरूक करने लिए उसारू गतिविधियां की लड़ी शुरू करने लिए कहा गया है ताजो उन्होंने सेहतमंद नशा मुक्त जीवन शैली वाल उत्साहित किया जा सके। इस बारे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि नशियां खिलाफ लड़ाई क्लासरूमों तो शुरू होनी चाहिए है। इस तों इलावा स्कूलों के आले दुआले 500 मीटर का नशा मुक्त जोन यकीनी बनाउण अते समय समय से इसकी पालना संबंधी रिपोर्ट करने लिए निर्देश भी दिए गए ने। गतिविधियां की निगरानी वास्ते विधि भी लाजमी बनाई गई है जिस तहत स्कूल मुखी ते सलाहकार काम की समीक्षा करेंगे ते फोटो समेत रिकॉर्ड रखेंगे। सिक्ख्या खोज ते सिखलाई बारे राज कौंसल वालों जारी किए गए गतिविधि कैलेंडर मुताबक स्कूल वालों पूरे अकादमिक साल दौरान विद्यार्थियों अध्यापकों ते सारे स्थानक भाईचारे की शमूलियत वाली गतिविधियां करवाईयां जाणगियां। अगस्त महीने च विद्यार्थियों वालों नशा विरोधी सुनेहे वाले पोस्टर बनाए जाणगे। इस नशा विरोधी मुहिम तहत सितंबर महीना मापियां नूं शामिल करने लिए समर्पित होगा। अक्तूबर महीने च कविता लिखन ते कुछ मुकाबले करवाए जाणगे। नवंबर तो फरवरी महीने तक नशा विरोधी जागरूकता वर्कशॉप करवाउण तो इलावा स्थानक भाईचारे नूं आपो अपने तजर्बे सांझे करन दा सद्दा दिता जाएगा। 21,000 तो वध अध्यापकां नूं विद्यार्थियों दरमियान मानसिक सेहत चिंतावां ते नशाखोरी के शुरुआती लक्षणों की पछाण करन वास्ते सिखलाई दिती जाएगी। पंजाब के बागबानी मंत्री मोहिंदर भगत ने बागबानी विभाग की प्रगति ते वख-वख विकास प्रोजैक्टां दा जायजा लैण लई अज अधिकारियों नाल समीक्षा मीटिंग की। चंडीगढ़ विखे मीटिंग दौरान बागबानी विभाग के प्रबंधकी सकत्तर अर्शदीप सिंह थिन ते डायरैक्टर बागबानी मनीष कुमार ने मंत्री नूं सूबे च बागबानी नाल संबंधित प्रगति ते वख-वख विकास प्रोजैक्टां बारे विस्थार नाल जानकारी दित्ती। इस मौके जापान इंटरनेशनल कोआपरेशन एजेंसी जीका की सहायता नाल सूबे च शुरू होने वाले 1300 करोड़ रुपए के विशेष जीका प्रोजैक्ट अपना पिंड अपना बाग ते बागबानी विकास केंद्र बारे विशेष चर्चा भी की गई। इस मीटिंग दौरान बागबानी मंत्री ने सूबे के आलू उत्पादकों ते कोल्ड स्टोर मालकों नाल संबंधित मुश्किलों नूं पहल के आधार से हल करने की हिदायत की। मंत्री ने विभाग के सारे प्रोजैक्टों नूं जल्द तो जल्द मुकम्मल करने लई अधिकारियों नूं निर्देश दिए। मंत्री श्री भगत ने बागबानी नूं होर प्रफुल्लित करने के उद्देश नाल किसानों नूं खेतीबाड़ी के नालों नाल सहायक कित्यां वल उत्साहित करने लई लोड़िंदे कदम चुकन ते वी जोर दित्ता। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ ਹੈ @AIRNU ਜਲੰਧਰ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ RNU-AIR ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ @AIR ਜਲੰਧਰ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕੈਪਟਨ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਾਜਨ ਉਧਮਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤੀਜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉਧਮਪੁਰ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸਟਾਪ ਓਵਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਦ ਇਨਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਬਿਊਰੋ PIB ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਇਕਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। PIB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਨਕਦ ਦੇਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ CHC ਤ੍ਰਿਪੜੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੱਕ ਮਿਆਰੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਕੈਂਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।

नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ निशांत कुमार, आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हाँ आज इस प्रोग्राम युववाणी विच। ते दोस्तों प्रोग्राम विच आज विशेष दिन आदि गलबात करांगे। ते प्रोग्राम दी शुरुआत विच आप सुनते हाँ एक प्यारा जिहा गीत।

0: प्रोग्राम श्याम सुहानी।
1: स्वागत है मेरे वालों साढ़े सारे ही स्रोतियां दा साढ़े आज दे प्रोग्राम शाम सुहानी विच। मैनू पता है साढ़े सारे स्रोते बड़ी बेसब्री नाल प्रोग्राम शाम सुहानी दा इंतजार करते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम दे जरिए ही वो अपने दिल दियां गल्लां सांझियां करदे होए अपने पसंद दा गीत भी सुनते हैं। तो दिल दियां गल्लां सांझियां करन ते अपने पसंद दा गीत सुनन लई तुहानू की करना पवेगा? जी हाँ, तुहानू डायल करना पवेगा साढ़े स्टूडियो दा नंबर 0164-2240-331। तुसी गीत सोचो ते डायल करो, उदों तक मैं तुहानू सुनांदी हाँ प्रोग्राम दा पहला गीत।

0: जी नंबर डायल हो चुका है 0164-2240-331 तो देखते हैं अपने पहले कॉलर कौन ने। हेलो हेलो, हाँ जी स्वागत है जी थोड़ा साडे प्रोग्राम विच शाम सुहानी विच।
1: हाँ जी धन्यवाद जी।
0: लड्डू सिंह जी केड़ा गीत सुनोगे?
1: कुलदीप मानक दा जी।
0: कुलदीप मानक दा गीत सुनोगे?
1: हाँ जी हाँ जी
0: ठीक है जी सुनते हैं कुलदीप मानक दा एक गीत तोड़े रेडियो सेट ते तुसी भी सुनो ते असी भी सुनते हैं फिर ठीक है
1: जी।
0: शुक्रिया जी बहुत बहुत
1: बहुत धन्यवाद थोड़ा जी।

0: सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
1: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
2: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
2: वधेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
4: जी देखते हैं अपने अगले श्रोता कौन ने ते कित्थों ने। हेलो
5: हेलो,
4: हां जी स्वागत है जी थोड़ा इस प्रोग्राम दे विच। कौन बोल रहे हो ते कित्थों बोल रहे हो?
5: धन्यवाद मैडम, धन्यवाद थोड़ा जी।
4: हां जी कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो?
5: असली सत्तन तो बोल रहे हैं, मंदिर साउंड वाला जिला मुक्तर
4: जी। केड़ा गीत सुनोगे आज?
5: करमजीत धुरी दा जी पापी साहब ने गल करा मुंडा दो।
4: करमजीत धुरी दा गीत सुनना है तुसी? करमजीत धुरी दा गुगी तोडे लई आ रिया तोडे रेडियो सेट ते, सुनदे आ फिर।
5: धन्यवाद,
4: बहुत बहुत धन्यवाद जी।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: जी स्वागत करते हैं साडे अगले श्रोता दा। कौन है ते कित्थों है? हेलो
4: हेलो,
3: हां जी सत श्री अकाल जी,
4: नमस्कार मैम,
3: स्वागत है जी तुहाडा साडे प्रोग्राम विच।
4: हां जी मैम,
3: कौन बोलदे हो ते कित्थों बोलदे हो, नाम दस दो।
4: सोनू देवी रामा मंडी।
3: सोनू देवी रामा मंडी तो। सोनू जी केड़ा गीत सुनोगे आज फिर?
4: गंगा जमुना सरस्वती।
3: गंगा जमुना सरस्वती फिल्म चो गीत सुनना तुसी, है ना? हाँ ठीक है, थोड़े रेडियो सेट ते गीत आ रहे हैं जी, सुनो तुसी फिर गंगा जमुना सरस्वती दा ये गीत।
4: थैंक यू मैम,
3: बहुत बहुत शुक्रिया जी।

0: ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
1: ਸਮਾਰਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਨਾਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਈਜ਼ੀ EMI ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਸਕੀਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਸਾਨ EMI ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਟ।
0: ਬਥੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨਾਪੁਰਮ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਸ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 1800-420-2233।
2: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: जी मिलते हैं अपने अगले श्रोता नाल। कौन है ते कित्थों है? हेलो
4: हेलो, सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे हो?
4: हरभजन सिंह पिंड टोटो जिला फरीदकोट जी।
3: जी हरभजन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा फोन करन दे लई साडे इस प्रोग्राम विच।
4: मोहम्मद सदीक
3: का सॉन्ग सुनोगे? ठीक है जी, पेश है थोड़े रेडियो सेट ते मोहम्मद सदीक का एक गीत।

प्रोग्राम शाम सुहानी जारी रखांगे आकाशवाणी FM बठिंडा तो, पर पहला सुनांगे 7 बजे के 30 मिनट ते पंजाबी विच खबरां आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं अमन देव। पहला चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलाड़ खेत्र नाल जुड़े 20 स्टार्टअप्स के सीईओज के संस्थापकों नाल गलबात की है। श्री मोदी ने उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने लिए पुलाड़ तकनोलॉजी की व्यापक वरतों करने की अपील की। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स से सूचना तकनोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन निर्माण योजना की शुरुआत की है। सरकार ने भरोसा दिता है कि अनुमान नालों घट उत्पादन के बावजूद घरेलू मंग को पूरा करने लिए देश में खंड का ढुकवा भंडार उपलब्ध है। भारत और ब्राजील ने दूर संचार से सूचना से संचार तकनोलॉजी के खेत्र में सहयोग बढ़ाने एक समझौते से दस्तखत किए हैं। भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नवी दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से महिला डबल्स के सैमीफाइनल पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी दिल्ली में पुलाड़ खेत्र नाल जुड़े 20 स्टार्टअप्स के सीईओज के संस्थापकों नाल गलबात की। श्री मोदी ने उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने लिए पुलाड़ तकनोलॉजी की व्यापक वरतों करने की अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश का पुलाड़ खेत्र आलमी प्रतिभा कंपनियां और निवेश का केंद्र बन सकता है। उन्होंने एक अजिहा वातावरण बनाने का सुझाव दिया जिथे पुलाड़ की चर्चा होने से लोगों का ध्यान भारत वल जाए। पुलाड़ उद्योग ते समाजिक विकास दे होर खेत्रां विचकार वधेरे सहयोग ते जोर दिंदिआं प्रधानमंत्री ने नौजवानां विच पुलाड़ बारे उत्सुकता ते दिलचस्पी नूं वधाउण लई अटल टिंकरिंग लैब्स नाल वधेरे सहयोग लई उत्साहित कीता। उन्हां कहा कि उन्हां ने सैक्टर विच जो विश्वास देखिआ उसने पुलाड़ खेत्र नूं निजी भागीदारी लई खोलण दे दृष्टिकोण नूं मजबूत कीता है। मीटिंग दौरान सीईओस ने सरकार दे फैसले दी प्रशंसा कीती ते कहा कि इस नाल बहुत सारे मौके पैदा होणगे। उन्होंने प्राइवेट पुलाड़ सनत विच तेजी नाल होई प्रगति का जिक्र किया ते भविख लई अपना दृष्टिकोण सांझा किया। उन्होंने उद्योग नाल सरकार दे मजबूत समर्थन ते सहयोग ते भी जोर दिता।

0: मुश्किल नूं सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करदा है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैण वालियां दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नूं बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1800-420-2233।
2: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: गल करते हैं साड़े अगली सुरता नाल, कौन है ते किथों है? हेलो
4: हेलो, सत श्री अकाल मैडम।
3: सत श्री अकाल जी, कौन बोल दे हो ते किथों बोल दे हो?
4: मैं जी मलोक तो राजू अरोड़ा बोल रहा जी।
3: राजू जी, सदा फोन करन ली साड़े प्रोग्राम च धन्यवाद। मैनू ये दसो भी केड़ा गीत सुनोगे अज?
4: अपना गुरनाम भुल्लर दा गीत सुना दो जी, गोरा रंग जी।
3: गुरनाम भुल्लर दा गीत गोरा रंग, तुसी ये सुनना सॉन्ग?
4: हां जी।
3: गुरनाम भुल्लर तुहाडा फेवरेट सिंगर है?
4: हां जी हां जी।
3: की काम करदे हो तुसी?
4: मैं ट्रैक्टर पार्ट दा काम करदा डिस्पोजल दा जी।
3: अच्छा जी, ठीक है, ते फिर तैयार हो जाओ अपने मनपसंद गीत सुनने दे लई, आ रहे तुहाडे रेडियो सेट ते। बहुत बहुत शुक्रिया जी फोन करन लई।
4: शुक्रिया।

0: फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी बिना दसे आ सकती है। अजिहे वक्त विच एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल नु सौखे ढंग नाल पार करन विच मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लैन वालिया दे लई मन्नापुरम फाइनेंस लेके आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जिथे तुसी हर महीने आसान ईएमआई राही इंटरेस्ट पे कर सकते हो ते अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नु बना सकते हो होर भी स्मार्ट।
0: बथेरी जानकारी लई अपनी नजदीकी मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच ते विजिट करो या इस टोल फ्री नंबर ते कॉल करो 1-800-420-2233।
2: गुप्ता जी, जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो, हां जी स्वागत है जी फोन कॉल करने के लिए साडे प्रोग्राम दे विच। कौन बोलते हो, कितों बोलते हो?
4: ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈਣਾ, ਐਫ ਐਮ ਬਠਿੰਡਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਹਿਲਾਈਆਂ ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿੰਦਾ।
3: ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣੋਗੇ?
4: ਹਰਜੀਤ ਹਰਮੰਦਾ ਲਾ ਦਿਓ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਬੋਲਦਾ ਚੌਕੇ ਤੋਂ।
3: ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ

0: दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
4: और मैं हूँ अजीत। आप सबको नमस्कार, स्वागत बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखनी कला छत्तीसगढ़ से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: रिश्ते अनमोल होते हैं, इन्हें शब्दों से नहीं प्यार, विश्वास और सम्मान से सींचिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं।
4: इस विचार के लिए आप सबको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। हमें पहला संदेश मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका, वंश, निकेश, धर्मेंद्र, मेघा, नंदिनी और ममता बाई वर्मा का।
3: नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से सूरज वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा।
4: और ग्राम बंगला मटिया बालोद से शिव कुमार अंगारे जी का।
3: हरदोई जिले के नगर पंचायत कुरसठ गांव के मोहल्ला रामनगर से राजेश कुमार विद्यार्थी और कोमल।
4: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा।
3: संजय नगर कॉलोनी नेपानगर से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा, खुशी, जानू, मनीषा, बसंती बाई और गणेश शिवदे।
4: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए। हमारा निवेदन वही है जो हमेशा होता है और वो ये है कि जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से और न सिर्फ सुनिए लेकिन दूसरों को भी सुनाइए
3: जी।
4: तो बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तो इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम के साथ बने रहिए। अब प्रस्तुत है आज का प्रेरक प्रसंग।
1: जी
0: तो विमलेश जी, हमने कल चर्चा की थी तितली के संघर्ष की।
1: बिल्कुल।
0: आज किसकी चर्चा होने जा रही है?
1: अजीत जी, आज हमारी चर्चा होने जा रही है बाज की। हम सभी इस पक्षी के बारे में जानते हैं। ये अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और शानदार उड़ान के लिए जाना जाता है। आज हम सुनेंगे बाज और मुर्गियों की कहानी।
0: श्रोताओ, इस कहानी का मूल भाव है स्वयं को पहचानिए। कहानी कुछ इस प्रकार से है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन हर बार ये हमें अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ नया सोचने के लिए जरूर प्रेरित करती है।
1: तो करते हैं शुरुआत कहानी की।
0: जी।
1: एक दिन की बात है, एक किसान खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे बाज पक्षी का बच्चा पड़ा हुआ मिला। वो घायल भी था, शायद किसी तूफान में वो घोंसले से गिर गया था।
0: तो उस किसान ने सोचा, यदि मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद ये जीवित नहीं बचेगा। वो उस बाज के बच्चे को घर ले आया और उसे अपनी मुर्गियों और चूजों के साथ रख दिया।
1: जी।
0: वो बाज का बच्चा अब मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा।
1: वो वही खाता जो मुर्गियाँ खाती थी। वो जमीन पर दाना चुगता, मुर्गियों की तरह थोड़ा बहुत उछलता और छोटे छोटे पंख फड़फड़ाता। और जब मुर्गियाँ कुट कुट करती तो वो भी वैसा ही करने की कोशिश करता।
0: उसे मालूम ही नहीं था कि वो वास्तव में कौन है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसकी क्षमता कितनी है।
1: जी।
0: एक दिन उसने आकाश में एक विशाल बाज को ऊंची उड़ान भरते हुए देखा। वो बादलों के बीच बिना किसी डर के शान से उड़ रहा था।
1: बाज के बच्चे ने आश्चर्य से अपनी मुर्गी माँ से पूछा, माँ वो कितना अद्भुत पक्षी है, वो कौन है? मुर्गी ने उत्तर दिया, वो बाज है, आकाश का राजा। बाज ने पूछा,
0: क्या मैं भी कभी उसके जैसा उड़ सकता हूँ?
1: मुर्गी हंस पड़ी, नहीं बेटा, हम मुर्गियाँ हैं, हम जमीन पर रहने वाले पक्षी हैं। इतनी ऊंची उड़ान हमारे बस की बात नहीं, हम उसकी तरह उड़ नहीं सकते। अजीत जी, फिर क्या हुआ? क्या बाज कभी उड़ पाया?
0: नहीं विमलेश जी, दुखद बात यह है कि बाज के बच्चे ने भी यही बात सच मान ली और उसने कभी उड़ने का प्रयास ही नहीं किया। वो पूरी जिंदगी मुर्गियों की तरह जमीन पर चलता रहा, कुट कुट करता रहा।
1: जी।
0: पता है, उसने उड़ने की जन्मजात क्षमता थी।
1: जी।
0: बस यदि वो थोड़ा और पंख फड़फड़ाता, अपने पंखों को फैलाता, उड़ने का प्रयास करता तो वो उड़ सकता था।
1: जी।
0: लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया था कि उससे हो ही नहीं सकता।
1: और एक दिन इसी भ्रम में उसका जीवन समाप्त हो गया कि वो एक साधारण मुर्गी है। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक पक्षी की कहानी नहीं है, ये हम में से बहुत से लोगों की कहानी है। कई बार परिस्थितियां हमें ये विश्वास दिला देती हैं कि हम जितने हैं उससे अधिक नहीं बन सकते।
0: श्रोताओं, विद्यार्थी सोचते हैं कि वे और अच्छा नहीं कर सकते, कुछ विषय उनसे हो ही नहीं सकते।
1: जी।
0: लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम साधारण हो।
1: जी।
0: इतना बड़ा सपना मत देखो। और श्रोताओं, होता ये कि धीरे धीरे हम भी उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं, अपनी क्षमता भूल जाते हैं।
1: हम अपने पंख समेट लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी सीमा में जीते रहते हैं जो दूसरों ने हमारे लिए तय की है।
0: लेकिन इतिहास गवाह है, हर महान व्यक्ति ने एक दिन यह तय किया कि वह दूसरों की सीमाओं में नहीं लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जिएगा।
1: आपने महान नर्तकी सुधा चंद्रन के बारे में अवश्य सुना होगा। जिस दिन उन्होंने सोच लिया कि कृत्रिम पैर के साथ वो नृत्य करके दिखाएंगी, एक इतिहास रच दिया गया।
0: श्रोताओं, आपने पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा के बारे में भी सुना होगा कि एक पैर खोने के बाद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। जी हाँ प्रिय विद्यार्थी, श्रोता मित्रों, आपसे कहना चाहते हैं, शायद आपके भीतर भी कोई ना कोई सपना है, कोई प्रतिभा है, कोई ऐसा कार्य है जिसे करने से आप डर रहे हैं। हो सकता है लोगों ने आपको बार बार निराश किया हो, लेकिन याद रखिए, दूसरे लोग आपकी पहचान तय नहीं कर सकते।
1: आपका भविष्य आपकी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपका विश्वास तय करता है। यदि बाज अपने पंखों पर विश्वास करे तो आकाश उसका है, और यदि मनुष्य अपनी क्षमता पर विश्वास करे तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं।
0: तो हम कहना चाहते हैं,
1: अपने पंखों पर विश्वास कीजिए, और हाँ, किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि
0: आप हैं।
1: बिल्कुल।
0: आशा है आपको हमारी प्रस्तुति अवश्य पसंद आई होगी श्रोताओं। यदि आई तो जरूर लिख भेजिए प्रोत्साहन के दो शब्द। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से श्रोताओं, आज का प्रश्न है, नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: नर्तकी सुधा चंद्रन किस नृत्य के लिए जानी जाती हैं और पर्वतारोहिणी अरुणिमा सिन्हा ने कब एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर भेज सकते हैं हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.ni

0: cic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: और इन्हीं पुस्तकों को यदि आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना होगा NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर। इस चैनल पर जाकर आप हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूप सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
1: कार्यक्रम में जल की दुर्लभता को समझाते हुए बताया गया है कि पृथ्वी पर पेयजल की मात्रा बहुत ही कम है, शेष खारा जल है, इसलिए हमें जल बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए।
0: साथियों नमस्कार, पिछली बार आपने सुना था कार्यक्रम पानी रे पानी। इस कार्यक्रम में आपने सुना था एक कविता के माध्यम से जल चक्र की प्रक्रिया के बारे में। आइए अब सुनते हैं इसी कार्यक्रम का दूसरा भाग, पानी रे पानी, जल है तो कल है।
2: प्यारे बच्चों और साथियों, मैं हूँ तुम्हारी दोस्त झुमकी।
3: और मैं हूँ झुमरू।
2: नमस्कार, नमस्कार।

0: तो झुमकी, आज हम बच्चों से क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: ये तो बहुत सही सवाल किया है आपने। आज हम चर्चा करेंगे किस पर?
2: जल बचाओ।
0: तो झुमकी, क्यों?
1: वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि इन दिनों पानी की समस्या ही सबसे बड़ी है।
0: हाँ,
1: तो चलो शुरू करें।
0: और हाँ बच्चों, तुम्हें भी तुक मिलाना है, समझे?
3: जी झुमरू जी।
0: चलो झुमकी।
1: ठीक है ठीक है, तो चलो मैं शुरू करती हूँ।
4: बंद रखो तुम नल हरदम, नहीं हो जब उपयोग, जल की एक एक बूंद का सदा करो सदुपयोग।
0: करते हो जब ब्रश तो नल को खुला कभी ना छोड़ो, नित्य प्रतिदिन ऐसा करके बूंद बूंद तुम जोड़ो।
5: झुमरू जी, किताबों में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, तो इसका मतलब हुआ पृथ्वी पर बहुत पानी है।
0: हाँ,
6: लेकिन यदि इतना पानी है तो पानी की कमी क्यों है?
4: क्योंकि इसमें से समुद्र का 96% जल खारा है और ये पीने योग्य नहीं है, है ना झुमरू जी?
0: हाँ बच्चों, पृथ्वी का सिर्फ 3.5% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से कुछ हिस्सा ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में संरक्षित है।
6: लेकिन जल बचाने के लिए हम बच्चे क्या कर सकते हैं?
1: बहुत अच्छा सवाल किया है ये तो। चलो, बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
0: जैसे?
1: जैसे हम स्नान करते समय जल का उपयोग कम कर सकते हैं, है ना? और क्या कर सकते हैं?
0: बताओ बताओ।
1: मैं नहीं, अब बच्चे बताएंगे।
0: ठीक है।
1: बताओ।
6: यदि हम किसी नल से पानी टपकता हुआ देखें, तो हम उसे तुरंत बंद कर सकते हैं।
1: और
5: यदि बनना हो तो हम किसी बड़े को बता सकते हैं।
1: हाँ, बहुत अच्छे।
0: हाँ, ताकि उसकी मरम्मत हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
6: यानी हम बच्चे भी जल बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: तो अब हो जाए सबके लिए जोरदार तालियां।

0: अच्छा अब ये बताओ बच्चों, तुम में से किस किस के पास गुल्लक है?
1: मेरे पास बहुत बड़ी पैसे।
0: अरे वाह,
2: तो फिर ये पृथ्वी भी तो एक गुल्लक ही हुई ना, है ना, है ना, है ना, बोलो।
1: हाँ।
2: जैसे गुल्लक में पैसे बचाते हैं, वैसे ही इस बड़ी सी गुल्लक में हम क्या बचा सकते हैं?
1: जल।
0: तो झुमकी, क्यों ना हो जाए इस पर एक सुंदर सी कविता। लेकिन ऐसी वैसी कविता नहीं, बल्कि तुक मिलाने वाली।
2: आपने तो मेरे मन की बात कह दी।
0: तो,
2: चलिए
0: शुरू हो जाओ।
2: बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। ये पृथ्वी मेरी गुल्लक है, हम इसमें जल बचाएंगे। आप भी कहिए।
0: हाँ हाँ, बूंद बूंद हम जल बचाकर। बच्चो अब तुम्हारी बारी है।
1: जीवन सुखद बनाएंगे।

0: बस फिर क्या था, बच्चों ने थोड़े दिनों के बाद एक समूह बनाया, नाम रखा बाल जल प्रहरी।
1: और फिर बच्चों ने संभाली अपने अपने घरों और कस्बे में जल संरक्षण यानी पानी बचाने की जिम्मेदारी।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम पानी रे पानी, जल है तो कल है।
3: मेरा नाम साक्षी है, मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
4: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हसरत मोहानी।
5: ये कार्यक्रम उर्दू के महान साहित्यकार जनाब हसरत मोहानी के जीवन और साहित्यिक उपलब्धियों पर आधारित कार्यक्रम हसरत मोहानी।
6: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको, अब तक आशिकी का वो जमाना याद है।
7: सैयद फजलुल हसन नाम और हसरत तखल्लुस। 1875 में कस्बा मोहान, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। बास किताबों में उनका सने पैदाइश 1880 और 1881 भी मिलता है। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिदे आजादी भी थे। अरबी फारसी की इब्तदाई तालीम मकतब में हासिल की। 1898 में गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहपुर से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद 1899 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मौजूदा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। हसरत ने 12 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 1903 का साल हसरत की जिंदगी में बड़ी अहमियत रखता है। उन्होंने बीए का इम्तिहान पास किया। इसी साल वो अपने बागियाना ख्यालात की वजह से कॉलेज से निकाले गए। अब हसरत अलीगढ़ के मोहल्ला रसलगंज में किराए पर मकान लेकर रहने लगे। 1903 ही में हसरत ने एक इल्मियो अदबी रिसाला उर्दुए मौल्ला जारी किया। ये सिलसिला आखिर उम्र तक जारी रहा। उर्दुए मौल्ला में अदबी और सियासी दोनों तरह

0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: आकाशवाणी FM बठिंडा दे सत्कार योग श्रोतियो, 22 अगस्त दिन शनिवार शाम 5 बजे प्रोग्राम किसान वाणी अंतर्गत डेयरी पशुआं दीआं मुख प्रजनन समस्यावां विषय ते जानकारी दित्ती जावेगी। अते ए जानकारी देणगे माहिर डॉक्टर खुशप्रीत सिंह, जो के गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे सहायक प्रोफेसर ने। इन्हां नाल गलबात करनगे वीरपाल कौर, प्रोग्राम दे निर्माता निर्देशक ने बलजीत शर्मा।
0: गुप्ता जी जब भी अपने पड़ोसी इनकम टैक्स ऑफिसर राव साहब के घर जाते हैं तो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। अरे नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, गुप्ता जी के सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। वो तो राव साहब का सोफा बड़ा अनकंफर्टेबल है ना, इसीलिए अगर सोफा बनवाते वक्त स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है कि नहीं चेक किया होता तो सोफा बनता ड्यूरेबल। और गुप्ता जी क्या, हर मेहमान होता कंफर्टेबल, तो डीलर को कहिए स्लीपवेल ग्लोटेक से दिखाए कि असली स्लीपवेल फर्नीचर कुशनिंग है या नहीं।
1: हां जी, हुणे तुसी सुन रहे सी कुछ संदेश, ते साडे नाल इक कॉलर जुड़ चुके ने, ते आओ लैंदे हां उहनां नूं ऑन एयर। हां जी, कौन बोल रहे हो ते कित्थों बोल रहे हो?
2: सत श्री अकाल भैन जी।
1: सत श्री अकाल वीर जी, कित्थों बोल रहे हो?
2: ठीक
1: है जी, गाना सुनना पसंद करोगे?
2: रब नाल ठगियां को मारे बंदे।
1: अच्छा जी,

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था,

0: अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
1: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
1: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
3: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
1: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
5: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितंबर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के

0: ये चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
1: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था। इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: टू शिप्स विच आर फॉरन फ्लैग,
3: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं। उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनुशर

0: और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों। रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said License Raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live.

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में गंगा जमुना फिल्म का गाना। गीतकार थे शकील बदायनी और संगीतकार नौशाद। हमारी अगली पेशकश लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मुगले आजम फिल्म से। गीतकार हैं शकील बदायनी और संगीतकार नौशाद।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है
3: ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करो वादा,
1: हाँ जी वादा।
5: और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में वक्त फिल्म से, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि।

मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे तू मीठे बोल जान मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे ओ सनम मैं तेरा आशिक जाविदा ओ सनम

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, तो मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। आप सभी को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जिक्र है जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी का।

अभिनेत्री अरुणा ईरानी की फिल्मों में शुरुआत 1961 की फिल्म गंगा जमुना से हुई थी, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री आजरा के बचपन की भूमिका अदा की थी। गंगा जमुना फिल्म यदि दोस्तों आपने देखी हो तो आपको याद होगा ये गीत भी, जिसमें अरुणा ईरानी स्कूल के गुरुजी और बच्चों के समूह में पर्दे पर गीत गाती दिखाई देती हैं।

मुंबई में जन्मी अरुणा ईरानी के पिता फरीदुन ईरानी नाटक मंडली चलाते थे और उनकी मां सगुना अभिनेत्री थी। परिवार के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए अरुणा जी को बचपन में पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। जिम्मेदारी का एहसास उन्हें हो चुका था क्योंकि 8 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी, इसलिए बचपन से ही फिल्मों में काम करना उनका आर्थिक सहारा बन चुका था।

60 के दशक में कुछ फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम करने के बाद 1967 में फिल्म फर्ज में उन्हें अच्छा मौका मिला जंपिंग जैक जितेंद्र के साथ।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

दोस्तों, अरुणा ईरानी को बतौर चरित्र अभिनेत्री पहचाना जाता है, लेकिन उन्होंने कई फिल्मों में बेहतरीन सहायक भूमिकाओं में भी काम किया है और कमाल का काम किया है। कई बार तो उन्होंने खलनायिका बनकर भी पर्दे पर एक नया ही मंजर पैदा किया है। अभिनय के अलावा पर्दे पर उन्हें बेहतरीन डांसर भी माना जाता रहा है। उनके हिस्से में कई मशहूर गाने आए हैं जो सुनते ही हमारी जुबान पर चढ़ जाते हैं। 1971 की फिल्म कारवा में अरुणा जी का काम बेहद सराहा गया और चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी गीत के अलावा ये गीत भी अरुणा जी के डांस की वजह से काफी लोकप्रिय हुआ था।

जहां आरा आया सावन झूम के, और उपकार कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसमें अरुणा जी ने अलग अलग चरित्रों को पर्दे पर उभारा और लोगों के दिलों में जगह बनाई। 1972 में अरुणा ईरानी के फिल्मी जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। अभिनेता महमूद ने उन्हें तत्कालीन संघर्षशील कलाकार अमिताभ बच्चन के साथ बतौर हीरोइन मौका दिया और वो फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा।

हालांकि ये भी सच है कि कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाते हुए भी वो हीरोइन पर भारी पड़ जाती थी और लोग अरुणा ईरानी को पसंद भी करते थे। 1973 में राज कपूर साहब की फिल्म बॉबी में छोटी लेकिन एक दिलचस्प भूमिका में उन्होंने अपनी खास छाप छोड़ी थी।

शुरुआत में अरुणा ईरानी को लेकर फिल्मकारों की सोच ये रही कि उनके रोल में कुछ नकारात्मकता का पुट बरकरार रहे, यानी उन्हें वैंप बना दिया जाए। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सोच बदली और अरुणा जी ने हिंदी फिल्मों में लगातार भूमिकाएं करके एक सशक्त चरित्र और सहायक भूमिकाएं निभाने वाली बेहतरीन अभिनेत्री का दर्जा हासिल किया। अभिनेता महमूद के साथ तो उनकी कई फिल्में आईं। फिल्म औलाद का ये गीत हम कैसे भुला सकते हैं।

अपनी अदाकारी के साथ साथ अरुणा ईरानी के साथ खूबी ये रही दोस्तों कि उन पर कई हिट सुपरहिट गाने फिल्माए गए हैं जो हरदम हमें बहलाते हैं, फुसलाते हैं। द ट्रेन फिल्म का ये गाना।

0: कुमार गौरव की फिल्म आई थी लव स्टोरी, और फिल्म में एक सीन के दौरान उन्हें लुभाती पर्दे पर अरुणा ईरानी ये गीत भी गा चुकी हैं।
1: हाँ।

0: करके तुम और हसीन लगते हो जी।
1: ज्योति फिल्म का ये गीत भी आपको जरूर याद होगा।

इन गीतों और फिल्मों के अलावा हम जोली, देवी, नया जमाना, गरम मसाला, दो फूल, मिली, लैला मजनू, शालीमार, कुर्बानी, दयावान, अंगूर, फकीरा, सरगम, रेड रोज,

रॉकी और बेटा जैसी फिल्मों में अरुणा ईरानी ने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है। दोस्तों, अरुणा जी को फिल्म फेयर के अवार्ड्स के लिए कई बार नॉमिनेट किया गया, लेकिन 1984 की फिल्म आई थी पेट प्यार और पाप, और इसके बाद 1992 की फिल्म बेटा के लिए भी अरुणा ईरानी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार

0: 1980 के उत्तरार्ध से लेकर 90 के दशक तक तमाम फिल्मों में अरुणा ईरानी ने माँ की भूमिका को अपनाकर अपनी अदाकारी को एक नया आयाम दिया। इसी दौरान कई फिल्मों में कॉमेडी का तड़का भी लगाया। लोगों ने उनके इस अंदाज को भी खूब पसंद किया।
1: ओए बुड्ढो लंबो लंबो।

दोस्तों, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने के बाद अरुणा ईरानी ने अपनी एक्टिंग के साथ बहुत ही गहरा संबंध बना लिया। इमोशनल और परिपक्व हो चुका था उनका अभिनय के साथ ये ताल्लुक। कुछ मराठी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है। सन 2000 से उन्होंने टीवी धारावाहिकों में भी एक्टिंग की शुरुआत की है, जो लगातार जारी है। कई सीरियल्स को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया है और बड़े और छोटे दोनों ही पर्दों पर अरुणा जी वर्तमान में भी सक्रिय हैं। फिल्म निर्देशक इंद्र कुमार उनके भाई हैं और अरुणा जी के पति हैं फिल्मकार कुकु कोहली। हालांकि सन 2012 में अरुणा जी को 57वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। लेकिन दोस्तों, अरुणा ईरानी को आज भी फिल्मों से और फिल्म देखने वालों से बेहद प्यार है, बहुत ही बेशुमार मोहब्बत है। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो हमेशा ही सक्रिय बनी रहें।

0: तो दोस्तों, ये था आज के फनकार कार्यक्रम। केंद्रित था जानी मानी अभिनेत्री अरुणा ईरानी पर और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

छाए गीत सुनने वालों को अनुराधा उपाध्याय का प्यार भरा नमस्कार। जिंदगी के इस चढ़ते उतरते सफर में अचानक किसी का यूं मिल जाना कि लगे जैसे न जाने कितनी सदियों पुराना है ये रिश्ता हमारा। दुनिया की भीड़ में इधर हटकर उधर हटकर ये नजरें बस उस एक चेहरे को देखना चाहती हैं, वो शख्स जो जाना पहचाना लगता है। मिला तो बस अभी अभी, फिर क्यों एक अजनबी सी कशिश होती है। लफ्जों से भी ना बोला अब तक वो, बस आंखों से कुछ बयां होता है। दो जोड़ी आंखें जब मिलती हैं तो वक्त थम सा जाता है। हम हैं यहां इस वक्त, पर यादें एक जहां घूम आती हैं। हां, यही वो चेहरा है जिसे तलाश रही थी अब तक मैं। यही तो चेहरा है जिससे नूर बरसता है, वो चेहरा जो किसी चांद से कम नहीं चमकता।

जिसका साथ हो गुनगुनी धूप सा, आंखों में सुबह शाम उसी का ख्वाब उतर आता है, पास ना होते हुए भी हर पल उसका ख्याल घेरे रहता है, जब वो ना हो तो इंतजार उसका, जब कभी करीब पाऊं तो वो मौन हमारा। सचमुच कितना प्यारा है ये साथ तुम्हारा, वो जो हम कुछ कहते कहते एक ही शब्द पर ठहर जाते हैं ना, थोड़ा रुक जाते हैं और मुस्कुरा देते हैं, बस वो एक पल मोहब्बत में घुला हो जैसे हम एक दूसरे की बाहों में सिमट गए हो जैसे।

कभी सोचा है मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? सबसे प्यारा है उसका एहसास, वो एहसास जो किसी की हंसी सुनकर आपके चेहरे पर मुस्कान ला दे, उसे उदास देखकर आपकी आंखें नम हो जाएं, लव्स जहां चुप हो जाएं, उसकी खामोशी पूरी दास्तां कह जाए, वो उसकी प्रतीक्षा जिसमें शिकायत कम और दुआएं ज्यादा हो, वो आंखें जो अपने आप में समाए हैं मेरा पूरा संसार, जिसके बस पास आते ही मौसम बदल जाते हैं।

अंतराल के इस पार आप सबका एक बार फिर स्वागत है। उस गगन पर चमकते चांद को देखा है कभी गौर से? तुम हो वो चांद मेरे लिए। चांद तो एक है और तारे अनगिनत। इसीलिए तो चांद इतराता है, इठलाता है। उस चांद के सबसे करीब वो जो एक छोटा सा सितारा है ना, बस मैं वो सितारा बनना चाहती हूँ तुम्हारे सबसे करीब और सबसे खास।

तुम्हारी बाहों में आते ही जीवन की सारी थकावट बिखर जाती है, बेचैन सांसों को चैन मिल जाता है, हसरतें सर उठाती हैं, सपने महक जाते हैं, वक्त ठहर जाता है, मन प्यार की धुली चांदनी में शीतल हो उठता है। सच मानो सबसे महफूज जगह तुम्हारी बाहों की पनाह है मेरे लिए।

तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत हो। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी सबसे प्यारी याद है। जैसे पहली बारिश याद रखती है सूखी जमीन को, जैसे पहला सपना याद रहता है मासूम से मन को, तुम रच बस गए हो मेरी रूह में। सुकून हो तुम मेरा, बसेरा हो मेरा।

0: सवेरा हो।
1: आज का छाया गीत संपन्न करने के लिए अनुराधा उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

मैया जिया कुछ बोल दो। अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो। अरे ओ

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी। कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
1: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात। सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
4: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
5: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
3: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
2: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
4: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।